श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की द्वितीय तिथि। तदनुसार दिनांक 24 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं, सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों

0: मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। हार केवल तब होती है जब कोशिश करना हम छोड़ देते हैं। गिरकर फिर उठना ही असली जीत की शुरुआत है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: उधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर।
1: ये कार्यक्रम वंदनवार की भक्ति रचनाएं थी। लीजिए अब सुनिए देशगान।

लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान में लंका कांड, आज भाग 321 प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला, ख्याल और तरानों की विशेषताएं, आज भाग 9 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सुबह 7 बजे सुनिएगा भूली बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा, आलेख एवं स्वर सविता सिंह के, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात में 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार फिरोज खान पर। आलेख एवं स्वर अशोक सोनावने का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा वड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भदरगी का, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। सुबह 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। सुरिया सफर दिन में 1 बजे, 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, 2:30 पर सदा बहार नगमे। दोपहर 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत आप सुनेंगे समुद्री यात्राओं का रोचक संसार, कहानी पद्मश्री की उषा बारली पंडवानी लोक गायिका के बारे में बात, मुझे कुछ कहना है कब किससे रूठें, उपयोगी टिप्स, फ्रिज में सामान कैसे रखें, मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव संवादक रहेंगी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। हेलो फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे, यूनुस खान संवादक हैं, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन, शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए मैं आप टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत सुनेंगे, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन टपकते सितारे, लेखन है सोमनाथ नागर का, निर्देशन कुमुद नागर का, 8:45 पर सुनिएगा समाचार।

संध्या 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे। ये था झरोखा आज के कार्यक्रमों का। आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंकाकांड में 321 भाग।

नल, नील, द्विज, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा राम लक्ष्मण को खोजता ललकारता रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आन उतरा है। उसके वाणों से वानर सेना की टुकड़ियां कट कट कर गिरने लगी हैं। मेघनाद का उद्घोष है कि आज वो भाई से द्रोह करने वाले विभीषण का वध अवश्य करेगा। क्रोध में कांपता धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच वो कठिन से कठिनतम वाण छोड़ने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे पंखों वाले सर्पों का समूह उड़ता चला जा रहा हो। मेघनाद के प्रहार से त्रस्त वानर और रीच जहां तहां भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य आ उपस्थित होता है जैसे युद्ध भूमि में एक भी वानर या रीच जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर मेघनाद का सिंह गर्जन सुनाई देने लगता है। ये देख हनुमान ने एक पर्वत खंड उठाकर मेघनाद पर दे मारा। पर्वत को अपनी ओर आता देख मेघनाद उछलकर आकाश में उड़ जाता है और हनुमान के बार बार ललकारने पर भी नीचे नहीं आता। वो श्री राम के ऊपर तरह तरह के अस्त्रों के साथ गालियों की बौछार करने लगता है। श्री राम उसके अस्त्रों को बड़ी सहजता से काट कर गिरा देते हैं। मेघनाद लज्जित होता है किंतु फिर माया रचाकर आसमान से अंगारों की वर्षा करने लगता है। साथ ही रक्त, पीप, हड्डियां तथा अन्य दुर्गंधमय पदार्थ बरसने लगते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा अंधकार छा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता। वानरों को भयभीत देख श्री राम एक ही वाण से इस माया दृश्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल आप प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुन रहे हैं, ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी नवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। तराना एक रहस्य विद्या है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मंत्र की बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है। तराने पर यह मेरी अपनी ही खोज है। तराना हमारी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी प्राचीन गायकी है जिसमें रहस्यमय प्राच्य विद्याओं का सार छिपा हुआ है। जिस समय धर्म पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, मंत्रोच्चारण सुनकर दुष्ट लोग साधना को भंग कर देते थे, उस समय सुनने में तो अर्थहीन स्तोभाक्षरों के माध्यम से नाद ब्रह्म द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की जाती थी। यह सांकेतिक भाषा है। तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, भक्ति शास्त्र, छंद शास्त्र, वेद वेदांत का सार तराने में छिपा हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व प्रणव ओंकार का प्रयोग करते हैं। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, यह ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जिसमें अ उ म के साथ साथ तीनों व्याहृतियों की व्यापकता विशाल दृष्टिकोण की द्योतक हैं। वह ओंकार कितनी बड़ी विशालता देने वाला है, अर्थात ओदानी है। इसी प्रकार हे परमात्मन तू दानी है, यानी तो दानी है। यदि स्वर के द्वारा ईश्वर की उपासना प्रभु की प्रसन्नता में हेतु बनती है तो स्वर ही ईश्वर की स्नेह साधना का सेतु बन जाता है। तदीम का मतलब है उस समृद्धि को देने वाला। ईम बीज जो क्लीम में काम बीज के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सभी में ईम काम बीज लगा है, यह तो प्राण बीज है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर मृत कहलाएगा। शिव में से ई निकाल दिया जाए तो शिव का शव हो जाएगा। दीम द याने देने वाला, उसमें ईम लगा है तो दीम बना है, यानी प्रत्येक कामना के अनुसार फल देने वाला यह काम बीज है। दिर दिर अर्थात दिव्यता को देने वाला परमात्मा, दी अर्थात दिव्यता, र जो है दिर का, वो र अग्नि बीज है अर्थात राति ददाति, दिव्यता का दान देने वाला। दानी दानी का अर्थ है तू दाता है, तू कृपालु है। देवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, इसके अनुसार देर देर तदेरे का मतलब है स्वर से ईश्वर के साथ सखा भाव से क्रीड़ा करना अर्थात लीला करना, उसके साथ रहना, अथवा कांत भाव स्थापित करना। यलम में य का मतलब है गति, लम अर्थात जीवन में गति देने वाला, गति लाने वाला यलम है। गति देने वाली शक्ति का संचार यलली में ई काम बीज से होता है।

लोम लोम जड़ता को कहते हैं। उसे निष्कासित करना अर्थात जाड्य यानी जड़ता को दूर करना है। द्रेम आदर सूचक है, यह शुक्र मंत्र भी है। इसका विवरण वेदोक्त सबीज नवग्रह स्तोत्र व भाष्य में उपलब्ध होता है। दरतन का तात्पर्य तनु यानी शरीर, तन शरीर रूपी हृदय की गुफा को दर यानी दरा संस्कृत में कहा जाता है, जिसमें परमात्मा का वास हो, हृदय गुहा का अंधकार दूर हो और उस प्रियतम का सदा मिलन बना रहे। यह एक प्रामाणिक खोज मैंने की है। तो आइए सुनिए मेरी संस्कृत में तराने की रचना, प्रस्तुत है राग भैरव में।

0: तराना केवल तरन्नुम नहीं है, तरन्नुम का अर्थ तो है केवल गुनगुनाना, और तराने का मतलब है पूरा गाना, जिसमें एक ऐसे इम्प्लिकेशंस छिपे हुए हैं, ऐसे संकेत छिपे हुए हैं कि अगर हम वेद शास्त्र और हमारी संस्कृति की धरोहर से हम खोजें तो पता लगता है यह गायकी अपने आप में बड़ा अहम रखती है और बहुत सी विशेषताएं लिए हुए हैं, किंतु हम अपनी समझ से नहीं शास्त्रों की समझ से इसे समझें तो पता लगेगा कि तराना अर्थ ही नहीं है, वह सार्थक है जिसमें बड़ी गहराई, रानाई और गंभीरता छिपी हुई है। तो मैं तराने के रहस्य को इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष बातें कहूँगा जो अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे। नमस्कार।
1: ख्याल और तराने की विशेषताएं, इस विषय पर श्रृंखला का नवा भाग अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगति की थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत कर रही हूँ मैं पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: मुकेश की आवाज में अभी ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म अब्दुल्ला से। शिवन रिजवी का लिखा गीत था, बुलो सिरानी का संगीत।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
5: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
4: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
6: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
4: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
8: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
7: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
9: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
10: हुआ।
9: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
7: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अनार बाला फिल्म से विजय मजूमदार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। आरसी पंड्या ने इसे लिखा था, बुलो सी रानी का संगीत था। और अब कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अंगुली माला इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आरती मुखर्जी की आवाज में, रचना है भरत व्यास की, धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं रोशन के संगीत से सजा। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा है, मोहम्मद रफी ने गाया और फिल्म का नाम है बाबर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तिकड़म बाज। इस फिल्म से शमशाद बेगम ने इसे गाया है, बी एन बाली ने लिखा है, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

दूसरा आदमी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। लिखा इसे भी मजरू सुल्तानपुरी ने है और संगीत पर किया है आर.टी. बर्मन ने।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत अदालत फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना की है गुलशन बावरा ने, संगीत बत किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं आनंद आश्रम फिल्म से, यशुदास और प्रीति सागर की आवाजों में। इंदीवर के बोल हैं, धुन बनाइए श्यामलाल मित्रा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
4: पेंटर बाबू
3: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
5: दिल तो पागल है,
3: दुश्मन
6: चिट्ठी न कोई संदेह,
3: गदर एक प्रेम कथा,
7: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
3: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
8: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
3: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
9: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में पहली फिल्म का गीत सुनिए, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: कुछ ही क्षणों में 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार

0: प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गयी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्ते। आज त्रिवेणी में हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कला होती है, जो जितना अधिक कार्य कर लेना चाहता है और जो जितना अधिक पढ़ता है उसमें उतनी अधिक जिज्ञासा होती है। उसे यदि सही समय पर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं या उसे क्या करना है इनका व्यावहारिक ज्ञान मिल जाए या ढूंढ लें, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, संवार सकता है अपने सपनों को।

अक्सर हमारे दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न चलते रहते हैं। हमारे इतने सारे विचारों में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इनमें अनगिनत विचारों के बीच हमें अपने उन विचारों को चुनना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी निर्भर होगी। वो विचार हैं अपने लक्ष्य का विचार। जो भी हमारा लक्ष्य है उसका विचार, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

हम अपने लक्ष्य के साथ जीना शुरू करें, हमारा लक्ष्य सोने, खाने, उठने, बैठने में शामिल हो और उस लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को ढालना शुरू करें और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को अपने अंदर समाहित करें।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा साया साथ हो।
6: आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक लेकर बस थोड़ी ही देर में होंगी हाजिर।

आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। नए गानों का ये खूबसूरत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। अब सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आइए इस कार्यक्रम में नई धुनों के साथ, नए गीतों के साथ और ढेर सारी ताजगी के साथ शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दे दी प्यार दी टू फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया आदित्य रिखारी और पायल देव की आवाजों में। इसे लिखा था कुमार ने और म्यूजिक कंपोजर थे पायल देव और आदित्य देव।

0: बागी फोर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जोश बरार परंपरा टंडन की आवाजों में। कुमार जगदीप और जोश बरार ने इस गीत को लिखा था, सलामत अली मतोई जोश बरार और आगाज ने संगीतबद्ध किया था।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
4: और
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
6: पेंटर बाबू
5: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
7: चिट्ठी न कोई संदेह,
5: गदर एक प्रेम कथा,
8: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
5: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
9: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा।

0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। माफ कीजिएगा, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत है। रोकी शिव ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म का नाम है मां।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, एक जरूरी सूचना आपको बता देते हैं कि आज

है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी विश्व समुद्री दिवस, समुद्र और समुद्री परिवहन के महत्व को समझने और सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ समुद्री व्यवस्था के प्रति जागरूक होने का दिन। इस दिन हमें सिर्फ समुद्र की सफाई की बात नहीं करनी, बल्कि समुद्र में रहने वाले अनगिनत जीवों के जीवन के बारे में भी सोचना है। समुद्र को साफ रखना यानी उनके जीवन को सुरक्षित रखना, दरअसल प्रकृति का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो होता है। हम पशु पक्षी, समुद्र, पानी और हवा सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए किसी एक हिस्से में बढ़ता प्रदूषण आखिरकार हम सभी के लिए संकट बन सकता है। तो आइए आज एक छोटी सी पहल करें, प्लास्टिक और कचरा जल स्रोतों में हम ना डालें, समुद्र और प्रकृति को स्वच्छ रखें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये दिवस हर साल मनाया जाता है सितंबर के आखिरी गुरुवार को। निशांची फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, अरिजीत सिंह ने इसे गाया है।

0: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मैरी टाइम डे के बारे में, जो कि एक सूचना नहीं, एक जानकारी है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और ये दिन मनाए जाने का महत्व क्या होता है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री उद्योग के इसी बेजोड़ योगदान का सम्मान देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण, समुद्र के जरिए होने वाले प्रदूषण को रोकने, जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री जीवों का व पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना इसका अहम उद्देश्य होता है। नाविकों का सम्मान भी इसी में आता है कि समुद्र में महीनों तक मुश्किल हालातों में काम करने वाले नाविकों और बंदरगाह कर्मियों के कल्याण और अधिकारों को भी रेखांकित करता है ये दिन। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा की गई थी। पहली बार यह दिवस 17 मार्च 1978 को IMO कन्वेंशन के लागू होने की याद में मनाया गया था।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओ रे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

0: बॉबी ऋषि की लव स्टोरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शान और आकृति कक्कर की आवाजों में। कुणाल कोहली ने इस गीत की रचना की थी, संगीतबद्ध किया था शान ने।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
1: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
5: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम चित्रलोक, और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लवयापा इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची ने संगीत पर किया।

चिड़िया इस फिल्म का गीत दिव्य कुमार की आवाज में। मेहरान अमरोही ने इस गीत को लिखा है और शैलेंद्र बर्वे ने संगीतबद्ध किया है।

परम सुंदरी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। सचिन जिगर ने इसे संगीतबद्ध किया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य गायक कलाकार।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं, एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहां भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है, वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का, वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज, ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था, और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है। लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
3: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वच्छ रहना है, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपको बीमारी

0: नहीं होगी, या जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी उसको निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
3: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
3: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा, कुछ छिल के निकले, तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो हैं उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक चार अनिवार्य कर लिया, दो से नहीं चलेगा, चार करना पड़ेगा, जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है, इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है, यहां तक वहां सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहां कैसे हुआ, वहां पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े के जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहां पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहां प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है, एक जगह में तो वहां एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहां की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूं, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूं, जो गुजरात से गवर्नेंस और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इंप्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इंप्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
3: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं ऐसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
0: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में और 2017 में नंबर एक पर आ गया, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है, तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहां से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण

0: फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने
1: जी
0: देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
2: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं लेकिन
1: जी
2: रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका
1: जी
2: गेट खुलने नहीं खुलने पर था। कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान
1: जी
2: लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था। करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे
1: जी
2: उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं
1: जी
2: क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को ला के पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और
1: जी
2: जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012
1: जी
2: सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में। माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है, वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने
1: जी
2: जिक्र किया सूरत वगैरह सा,
1: जी
2: वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा
1: जी
2: की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंभा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहां प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदान पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बुलाया जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है,
2: क्योंकि एक चीज आप देखिए
1: जी,
2: जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा,
1: हाँ।
2: सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है,
1: नहीं।
2: सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, मां बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा। लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, चार पी, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस। कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
0: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
0: पहले हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
0: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 300,000 मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी
1: जी,
0: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है, उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है
1: जी।
0: तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे, तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 158,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 131,000 टन हम इसका इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस है, उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए, इनको इनका जो इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी,
0: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं, ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में सोच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो उस चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है गंदगी रहने की या हाइजीन।

0: इनका बात
1: जी
0: आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का
1: कॉन्सेप्ट
0: इसको इसलिए वॉश बोलते हैं, वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा कि, और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा, खाली एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड किया जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस। जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ एयर वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितने उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
0: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है। और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी।

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज लगी बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूं। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर हमारा दफ्तर हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर के कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वीं संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के

0: रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं,
2: हमारे

इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइश द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका फिल्मी सफर रहा है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा वढ़ावकर से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूँ और आज हमारे साथ संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं। ये हैं मराठी फिल्मों के जाने माने म्यूजिशियन, अरेंजर और संगीतकार अप्पा वढ़ावकर। बहुत बहुत स्वागत अप्पा जी आपका।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: ये बताइए, विविध भारती के स्टूडियो में आके आपको क्या अनुभूति हुई?
2: बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, थैंक यू सो मच।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेडियो से तो आपका बड़ा पुराना नाता है, आप बचपन में रेडियो के कार्यक्रम करने जाते थे, उसकी क्या याद है आपकी?
2: मेरे ख्याल से 8-9 वर्ष का था।
1: किस साल की बात होगी?
2: 68-69 की होगी।
1: ओ,
2: तो उस टाइम एक मराठी में एक छोटा प्रोग्राम रहता था छोटा बच्चों का,
1: जी
2: गम्मत जम्मत नाम।
1: अरे बहुत ही मशहूर प्रोग्राम।
2: कि उधर मैंने वायलिन बजाया एक्चुअली।
1: बाबा,
2: ज्यादा से ज्यादा वायलिन बजाया। तो मैं वायलिन सीखता था, मेरे वायलिन के गुरु प्रभाकर पंडित जी जो

0: फिर बाद में रेडियो पर कंपोजर वगैरह थे, तो
1: जी
0: उनसे वायलिन सीख के मैं पहले थोड़े से प्रोग्राम वो गम्मत जम्मत में बजे थे।
1: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके पिताजी भी एक बड़े संगीतकार रहे हैं, तो अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में हमें बताइए।
0: मेरा पिताजी वैसे अच्छे हारमोनियम बजा लेते थे,
1: जी
0: ऑर्गन बजा लेते थे,
1: राम
0: शायद
1: बढ़ावकर जी।
0: राम वड़ावकर जी, और शायद पियानो भी बजाते थे, क्योंकि
1: अच्छा
0: मेरी शुरुआत की जो ट्यूशंस हुई उनके पास ही हुई।
1: जी
0: और जैसे हारमोनियम में हम बोलते हैं ना, जो सारे गमो समझो कि एक टेक्निकल बात है ये, कि
1: जी
0: वो सफेद एक सुर से सारे गामा अगर हम बजाएंगे तो हमारी फिंगर होती 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1: राइट
0: लेकिन वो दो प्रकार की फिंगर्स मुझे बताते थे जो पियानो में यूज करते हैं, कि 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है वो पियानो भी अच्छा बजाते होगी।
1: वाह
0: फिर वो पहले प्रभात कंपनी की थी
1: जी शांताराम जी
0: वहाँ,
1: के।
0: हाँ स्टाफ पे वो म्यूजिशियन करके थे, वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे वो, क्योंकि उस टाइम 3 4 म्यूजिक डायरेक्टर वहां रहते थे, वो तो सैलरी पे रहते थे, यानी कि गोविंद राव टेम्बे या तो मास्टर कृष्ण राव, ये वसंत देसाई,
1: जी
0: तो वो वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे
1: अच्छा,
0: और उनके साथ बहुत सारा काम किया उन्होंने।
1: वसंत देसाई तो महाराष्ट्र के राज्य संगीतकार का दर्जा उन्हें
0: बिल्कुल
1: प्राप्त था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और आगे हम बात करेंगे कि कैसे आपका और उनका साथ जो बना है। अप्पा जी, पिताजी ने कई बड़े बड़े कलाकारों के गाने रिकॉर्ड किए हैं और कई प्रभात कंपनी में उनके साथ जो अनुभव हुए हैं, कुछ कुछ उन्होंने आपको बताया उन।
0: उन्होंने बाद में एक आह्लाद चित्रक नाम की एक संस्था थी,
1: जी
0: दत्ता धर्माधिकारी
1: जी
0: नाम के प्रोड्यूसर थे, जिनको हम दत्ता मामा कहते थे। तो उनके जो बहुत सारे पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन मेरे पिताजी ने वसंत पवार के साथ किया था,
1: अच्छा
0: यानी
1: अच्छा
0: वसंत पवार राम वड़ावकर, ऐसा वो जोड़ी आती थी उस टाइम।
1: जोड़ी।
0: जैसे कि पुराना चिमनी पाखर है, अबोली है,
1: हाँ
0: और कुछ दो तीन हिंदी भी थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मराठी 9 10 पिक्चर्स किए हैं।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: बाद में मेरे याद में जो है, जो रिकॉर्डिंग में गया था मैं,
1: अच्छा अच्छा
0: आशा भाई के दो तीन गाने थे, फकीरा नाम का चित्रपट है मराठी
1: जी
0: में, वो
1: जी
0: 62 63 में आया था।
1: ये
0: और
1: हिंदी फकीरा की बात नहीं हो रही है,
0: नहीं
1: मराठी
0: नहीं
1: फकीरा
0: मराठी
1: की बात हो
0: फकीरा,
1: रही।
0: मराठी फकीरा वो 62 63 का आया, और बाद में एक 64 में आया चित्रपट आया था मराठी, शोधा म्हणजे सापडेल, जिसमें सुमन कल्याणपुर ने दो तीन गाने गाए
1: तो
0: थे।
1: आपने आशा भाई और
0: यहाँ
1: सुमन जी को देखा।
0: देखा है, बिल्कुल देखा है, उस टाइम मुझे इतना मालूम नहीं था, इतने बड़े कलाकार ये मुझे नहीं मालूम था,
1: आप तो छोटे
0: 12 साल का 14 साल का था।
1: थे जी।
0: तो उनके साथ मैंने बजाया भी है, सुमन ताई के साथ,
1: हाँ
0: उनके जो रिहर्सल चलती थी,
1: जी
0: तो रिहर्सल्स में मुझे बजाने को बोलते थे। जिस चित्रपट में सुमन ताई गाई थी, वो चित्रपट का संगीत संयोजन अनिल मोहिले जी ने किया था, तो अनिल जी मुझे बोलते थे रिहर्सल में तुम बजाओ, तो
1: क्या
0: उस
1: बात
0: हिसाब
1: है।
0: से मैंने उनसे साथ बजाया
1: अच्छा आपके हाथ में वायलिन किस बरस की उम्र में दे दिया गया था,
0: है। मैं शायद 12 13 बरस का था,
1: तब से बजा रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी थे वायलिन के, वो मेरे पिताजी के असिस्टेंट थे,
1: ओ
0: प्रभाकर।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने उनको बोला, अरे इसको हारमोनियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वायलिन भी सीखना चाहिए उसने, और कुछ सीखना चाहिए, तो उनके साथ मैंने वायलिन उनके पास मैंने सीखा हुआ।
1: कितने साल तक सीखते रहे।
0: 7 8 बरस तक मैंने सीखा, 70 71 तक मैंने वायलिन का रियाज चालू रखा था एक।
1: और पिताजी हारमोनियम सिखा रहे थे,
0: हाँ,
1: तो
0: मेरे
1: ये
0: पहले गुरु जी मेरे पिताजी
1: कितने सख्त थे वो।
0: ने, बहुत प्यारे थे।
1: जी अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हारमोनियम का जिक्र, वायलिन का जिक्र, पर आप तो अकॉर्डियन भी बजाते हैं, ये कहां से शुरू हुआ
0: ये
1: था।
0: एक्चुअली क्या हो गया, मैं 72 में BA जब परीक्षा दे रहा था, तो मेरे पिताजी का निधन हो गया, और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। तो फिर पूछा घर में कि ये क्या करता है, तो मेरे मास्टर जी थे, तो वो बोले हारमोनियम बजा लेता है, मेरे पास वायलिन सीखता है। तो फिर वसंत देसाई बोले कि हाँ हारमोनियम बजा लेता है, तो उसको फलाना फलाना डेट को मेरे पास भेजो। और फिर उधर गया, मैं पास हो गया, उनके हिसाब से पास हो गया। फिर 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया,
1: गजब।
0: हाँ, तो उधर क्या हुआ कि लोग आते थे, यानी जयवंत कुलकर्णी है या तो शरद जांबेकर, प्रमिला दाता, रुफैया जी, वाणी जयराम। तो जयवंत कुलकर्णी, उनके साथ, जयवंत जी के साथ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। और उनके साथ जो एकॉर्डियन बजाता था, सूरज साठे नाम का,
1: सूरज साठे बहुत
0: बड़े बजाने वाला
1: जी, जी।
0: तो जब मैंने उसको देखा तो बोली ये साज बढ़िया है, उसमें क्या इफेक्ट मिलता है प्रोग्राम में ये वो, तो मन में कुछ ले लिया। तो फिर मैं 74 को एकॉर्डियन खरीद लिया।
1: अरे बाबा।
0: तो फिर अब 78 से मैं बार बजाने लगा सीख के।
1: अच्छा।
0: पहले मैंने ऑडिशन भी दी थी रेडियो की।
1: अरे बाबा।
0: 78 में मैं ऑडिशन पास हो गया रेडियो की।
1: जी जी।
0: हाँ, तो वहां से फिर एकॉर्डियन शुरू किया। तो शायद 80-82 तक, जब तक मैं कीबोर्ड नहीं मेरे पास आया तब तक एकॉर्डियन बजा रहा था।
1: मैंने एक और चीज जो पढ़ी है आपके बारे में कि कॉलेज रुइया में पढ़े आप, और पढ़ाई करने तक आपके मन में ये तय नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है।
0: बिल्कुल, जब मैं 72 में वसंत देसाई के आ गया,
1: हाँ,
0: तब मेरा फाइनल हो गया कि मैं करियर करूंगा तो इसमें करूंगा।
1: और ये बैंक वाला मामला क्या था?
0: बैंक की परीक्षा देनी पड़ती थी ना।
1: हाँ, तो आपने बहुत मेहनत की, तैयारी की उसकी?
0: तैयारी की थी, लेकिन बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गया मैं।
1: जी जी।
0: मेडिकली तो 2-3 बैंक में ट्राई किया तो बोले ये तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं इधर। और ये मौका मिल गया वसंत देसाई जी के उधर जाने का, तो वहां से फिर हो गया कि मैं म्यूजिक करूंगा।
1: वाह, वसंत देसाई का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: वसंत देसाई की याद के नाम।
0: बिल्कुल।
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ठीक है।

अप्पा वढ़ावकर जी से बातें हो रही हैं और अप्पा आप बता रहे हैं कि वसंत देसाई जी ने आपको अपनी निगहबानी में ले लिया और आप कुछ साल तक वहां बजाते रहे। वसंत

0: देसाई से जुड़ी कुछ यादें हमें बताइए, क्योंकि आपकी उम्र तो कम थी उस वक्त और वो बहुत बड़े संगीतकार थे।
1: बरोबर बरोबर। तो मैं, एक कैंपेन था गवर्नमेंट का, एक सुर एक ताल नाम का। ये
0: हाँ
1: उसका ये तो मोटो ऐसा था कि समझो कि पाठ्य पुस्तक के जब मराठी पाठ्य पुस्तक है, ये तो समझो एक कविता है, देवा तुझे कितनी सुंदर आकाश। तो ये जो कविता है, तो उस टाइम क्या होता था कि समझो कि बालमोन स्कूल का म्यूजिक टीचर है, वो अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनाता था। पार्ला का एक आधा स्कूल है तो उसके हिसाब से वो मास्टर ट्यून बनाएगा। ठाणा पूना ऐसा जो अलग अलग ट्यून बनते थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कुछ। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो गाने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है, कैंपेन चालू किया कि एक सुर एक ताल, यानी कि किधर का बच्चा भी एक साथ आए और एक कविता गाने को बोले, तो एक ही ट्यून में गाए एक ही ताल में गाए।
0: क्या बात है।
1: तो ये कैंपेन में मैंने 8 बरस काम किया उसमें।
0: और वसंत देसाई के साथ फिर महाराष्ट्र के गांव
1: बिल्कुल, जिले
0: गांव
1: जिले
0: शहर
1: में, गांव
0: शहर।
1: गांव में हम लोग घूमते थे।
0: जी
1: और उधर क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं, शिविर कैंप जो होता था, वो समझो कि सोलापुर में गए हम लोग, तो उस एरिया के म्यूजिक टीचर्स उधर बुलाते थे,
0: जी
1: समझो 200-250 लोग होंगे, वो गाने सीखेंगे 3 दिन में, जो कुछ होगा 3-4-5 गाने जो होगा वो आप अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे अपने बच्चे को, और फिर एक बड़ा सेमिनार लेके वो गाने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कैसा क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा कैंपेन था एक्चुअली, मास
0: क्या बात
1: सिंगिंग
0: है,
1: बोलते उसको,
0: वाह वाह। और
1: समूह
0: ये
1: गान।
0: पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र में ये एक
1: मेरे
0: प्रोजेक्ट
1: ख्याल
0: चला
1: से
0: था।
1: मेरे इसमें वही मालूम है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था।
0: उसी दौरान क्या वसंत देसाई ने महात्मा गांधी का एक भजन कंपोज किया था, हे नम्रता के सागर, आपको कुछ
1: हाँ,
0: याद है
1: वो
0: इसकी?
1: एक्चुअली भजन नहीं है,
0: जी
1: वो एक्चुअली कहावत है ऐसे कि वो गांधी जी ने जेल में एक पत्र लिखा था,
0: यस,
1: और पत्र को वसंत देसाई जी ने वो ट्यून बना के, जैसा लगता है गाना ही है,
0: मन्नाडे ने गाया
1: मन्ना
0: था।
1: डे ने गाया था। बहुत अच्छा तर्ज उसका हुआ था।
0: तो आप उस वक्त वसंत देसाई के साथ थे?
1: नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं था, मैं
0: जी
1: जाने के पहले वो रिकॉर्ड हुआ था।
0: अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए कि वसंत देसाई के साथ इतना ज्यादा अनुभव आपका है और वो एक बहुत ही अप्रतिम संगीतकारों में से
1: बिल्कुल।
0: रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें?
1: एक्चुअली एक बात मेरे बारे में, इतना मैं लकी हूं
0: जी
1: कि मेरे जो चित्रपट के जो पहला पहला गाना, यानी समझो कि हिंदी का पहला गाना जो मैंने बजाया
0: जी
1: एज अ म्यूजिशियन,
0: जी
1: वो वसंत देसाई का म्यूजिक,
0: वाह,
1: शक नाम का चित्रपट
0: हाँ हाँ
1: था,
0: बिल्कुल
1: शबाना आजमी, विनोद
0: जी,
1: खन्ना वगैरह काम
0: हाँ हाँ
1: करते
0: हाँ वो गाना कौन सा था?
1: थे, वो अभी ना पर्दा गिराओ करके गाना
0: वाह
1: था।
0: वाह वाह, जेके बनर्जी ने गाया था।
1: यस, काका
0: जी
1: जी हम लोग उसके बोलते थे। तो
0: जी
1: वो गाना बजाने का मुझे मौका मिल गया, वो वसंत देसाई का था।
0: गुलजार साहब
1: मर
0: के बोलते, अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो कि
1: क्या
0: दास्तां अभी और भी है।
1: बात है, मराठी का पहला चित्रपट गाना मैंने वसंत देसाई साहब का बजाया,
0: क्या बात है,
1: और वो गायक कौन था, तो पंडित भीमसेन जोशी जी,
0: ओ
1: भारत रत्न।
0: वाह वाह वाह
1: इतना अभी ये आता है कांटा रोंचा आते मुझे कि
0: जी। तो
1: वो
0: जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था?
1: तनाव तो था, क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा, पहले वो हिंदी का इतना तनाव ना था, क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ,
0: जी
1: कम
0: जी
1: से कम 15 रिहर्सल किए थे।
0: वाह,
1: लेकिन और क्या, वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था वो
0: जी
1: काका जी का, पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का, वो ऐसा सामने पंडित जी बैठे, मैं इधर बैठा हूँ,
0: अरे बाप
1: वो
0: रे,
1: गा रहे हैं, और क्या उनका आवाज,
0: कंठ क्या गजब
1: बढ़िया
0: था,
1: बढ़िया
0: है ना?
1: बढ़िया।
0: गाना याद है कौन सा था वो?
1: वो रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग,
0: आप गा के
1: ऐसा
0: बताइए।
1: रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, आगे का वर्ड्स आता नहीं, ये
0: जी
1: चंद्रकोश में बांधी हुई चीज थी, और
0: वाह
1: बढ़िया गाया था।
0: क्या बात है, सुंदर याद आपने हमारे साथ साझा की है। और चूंकि शक फिल्म के गाने का जिक्र किया है
1: हाँ
0: तो वो गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: बहुत सुंदर बातें आपके साथ हो रही हैं अप्पा जी, और आप आगे चलकर म्यूजिशियन से म्यूजिक अरेंजर कैसे बने ये कहानी हमें बताइए।
1: पहला म्यूजिक अरेंजर ऐसे काम किया तो मैंने स्टेज पे किया था
0: जी।
1: तब क्या हुआ कि एक मैं एक ग्रुप कर रहा था, सब वैसा मैं थोड़ा सा इधर काम किया, वसंत देसाई के साथ, उसी रामचंद्र के साथ काम किया, तो थोड़ा सा मैं सीनियर था उनमें, और नोटेशन मुझे आती थी और उन लोगों को कुछ नोटेशन नहीं आता था। तो अचानक वो जिम्मेदारी मुझे पड़ गई
0: हाँ।
1: कि इनको सब संभालो एक साथ, तो अरेंजर उधर ऐसे ही बन गया।
0: हाँ।
1: तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं सोचता था कि अरे मतलब क्रेडिट्स में मेरा नाम नहीं आता था, और सिंगर्स के नाम आते, वो इधर इसका नाम आया उसका नाम है, म्यूजिक अरेंजर का नाम नहीं। तो मैंने सोचा कि चार सिंगर है, वो पांच पांच छह छह गाने बिठाएंगे गाएंगे, लेकिन मेरे को 25 गाने बिठाने पड़ते हैं
0: जी,
1: और वो सब म्यूजिशियन से काम करना लेना, तो मेरा काम भी ज्यादा है ना।
0: हाँ।
1: तो क्रेडिट्स में आना चाहिए नाम, तो मैं करते गया कि हमारा भी नाम आना चाहिए आना चाहिए, तो तब से वो नाम आने लगा। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि ये मेरे से शुरू हुआ
0: म्यूजिशियंस के नाम आने जो है उसकी कोशिश आपने,
1: अरेंजर का
0: बहुत बड़ी बात।
1: वहां से फिर किसी ने सुना कि ये लड़का अच्छा काम करता है, तो किसी ने मेरे को, पहले तो दूरदर्शन मैंने बहुत बजाया
0: जी जी
1: और वहां तो क्या कुछ नाम नहीं, लेकिन क्या समझो कि यूनुस भाई आए, तो समझो शब्दान चप्पल का कार्यक्रम होता था, पांच गाने हैं, तो आपने दो गाने का किया है अरेंजमेंट और तीन गाने का फिर वो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे अप्पा जरा ऐसे करुण टकना अरेंजमेंट जरा, तो फोकट का अरेंजमेंट करता हूँ, अलग का पैसा नहीं मिलता वो फोकट का, तो ऐसा अरेंजर बन गया था मैं 77 को।
0: अच्छा, एकदम
1: दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मैंने 74 में बजा है वसंत देसाई के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: वहां उन्होंने क्या परफॉर्म किया?
1: वो एक शिवराज्यभिषेक हुआ था, 300 शिवराज्यभिषेक 74 में, 6 जून 74
0: जी।
1: तो रायगढ़ पर वसंत देसाई जी ने गाना सादर किया था, उसका रिकॉर्डिंग उधर हुआ था
0: दूरदर्शन में।
1: दूरदर्शन, तो वो पहला उधर बजा है मैंने
0: जी। और उसके बाद आप धीरे धीरे अरेंजर बनते हैं।
1: हाँ, पहला कैसेट मैंने बजाया होगा जब कैसेट का जमाना आएगा 79-80 को
0: जी,
1: तब से मेरा वो चालू हो गया काम।
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सुधीर फड़के हो या स्नेहल भाटकर हो या फिर वसंत देसाई हो, यशवंत देव हो, इन सब के साथ आपने काम किया है, तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए।
1: एक तो वसंत देसाई के साथ मैंने अरेंजमेंट का काम कुछ नहीं किया, उनके पास सेबेस्टियन जी
0: वहां पर बजाते थे,
1: लेकिन उनका मैं देख रहा कि उनका जो पेशेंस था ना
0: जी,
1: बढ़िया पेशेंस था, यानी कि समझो गाना सिखाया और अभी आशा जी और ये छोड़ दो, लेकिन जो स्कूल में हम लोग जाते थे ना सिखाने को, एक सुर एक ताल, एक गाना वो एक लाइन 10 बार 12 बार बोलते थे कि मैं सिखाने को तैयार हूं तुम सीखने को तैयार हो जाओ। वो कंटालते नहीं थे, वो बहुत पेशेंस था, वो पेशेंस जो चीज है, और वक्त पे जाना।
0: वाह।
1: 9 बजे का रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम, वो 8:45 बजे वसंत देसाई जी स्टूडियो में हाजिर थे।
0: वाह।
1: वो एक अच्छा, मुझे ये लगा कि टाइम पे जाना चाहिए, ये दो चीजें वहां से अच्छी मिल गई मुझे। यशवंत देव के पास मैं जब गया, जो उनका पहला अरेंजमेंट का काम मैंने किया, तो उनका एक आदत था कि वो गाने का नोटेशन लिखते थे और वो ताल में बार टू बार लिखते थे नोटेशन, तो सब गाने मैंने उस टाइम क्या करता था, मैं थोड़ा सा आग की वजह से मैं उधर लिखता नहीं था, वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके लेता था सब गाने, तो उनके गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी दे दी गाने की, अब तुम्हारे लिरिक्स की और उसके नीचे नोटेशन लिखा हुआ
0: जी।
1: तो मैं बोला कि मेरे पास अभी गाने हैं ना रिकॉर्ड किए, तो ये क्यों चाहिए मुझे। तो बोले नहीं, जब तुम समझो कि चार अंतरे का गाना है, पहला तीसरा इसके ट्यून सेम है, 1/3 और 2/4 ट्यून सेम है, लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट अंतरे का जो म्यूजिक बजाएंगे आप वही थर्ड को बजाना, क्योंकि फर्स्ट अंतरे का कंटेंट और थर्ड का कंटेंट अलग हो सकता है। फर्स्ट में हैप्पी होगा तो थर्ड में दुखी भी हो सकता है।
0: लेकिन आमतौर पर लोग यही करते थे कि M1 जो है वो M3 में डालते थे।
1: हाँ।
0: M2 M4 में डालते थे।
1: हाँ। पहले ऐसा ही करता था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा मत करना, स्क्रिप्ट सामने रखो,
0: जी
1: उसका अर्थ मीनिंग समझा लो, अगर सेम जाता है तो ठीक है,
0: हाँ।
1: लेकिन अगर मीनिंग डिफरेंट है तो तुमको दूसरा अगला कुछ करना पड़ेगा।
0: वाह।
1: तो तब से जो मैंने मेरे में सुधारणा की जो एज फार एज पॉसिबल,
0: ये उनकी बदौलत हुआ।
1: हाँ यस, उनका जो एक शब्द प्रदान गायकी यानी शब्दों के हिसाब से उच्चारण होना चाहिए, उनका एक खासियत है यशवंत देव साहब का, उस हिसाब से मेरा शब्द प्रदान म्यूजिक अरेंजमेंट ऐसा हो गया उस टाइम से।
0: क्या बात है, सुधीर फड़के की कोई याद बांटी है?
1: अरे अरे सुधीर फड़के का तो बहुत है, उन्होंने एक ही पिक्चर का हम लोग अरेंजमेंट किया उनका, मैं और सुराज साठे।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये गाने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे, उनके घर में ही बैठे थे
0: जी,
1: मैं और उनका बेटा श्रीधर
0: जी।
1: तो गाने का हम लोग के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया ऐसा हम लोग का लगा।
0: हाँ।
1: तो बाबूजी को बोला कि सुनिए उसको पास कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या तो उसका फाइनल नोटेशन लिखने में जरा। तो उन्होंने आग बंद करके वो हमारे अरेंजमेंट जो कुछ है सुन ली, बोले बहुत बढ़िया किया है। हमको लगा कि यार क्या शाबाश की मिल गए हम लोग को, लेकिन बाद में बोले इसमें मेरा गाना किधर है?
0: अरे बाप रे,
1: तुम्हारी अरेंजमेंट ऊपर जा रही है मेरे गाने पे,
0: गाने के ऊपर चढ़ गई है,
1: चढ़ गई है ना, मेरा गाना गया किधर?
0: अरे अरे अरे,
1: तो मेरा गाना नहीं है, तो ये गाने के लिए ये नहीं चलेंगे, ये और किसी के गाने को लगाओ आप। इसके लिए अलग टाइप, थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, ये टाइप ये टाइप ये टाइप करो। तो फिर बाद में हम लोग
0: पूरा काम फिर से किया।
1: हाँ, तो ये मिल गया ना।
0: हाँ।
1: कि बाबा गाने पे चढ़ना नहीं चाहिए,
0: सपोर्टिंग होना चाहिए,
1: सपोर्टिंग चाहिए।
0: क्या बात,
1: तो इतने बड़े आदमी है वो क्या।
0: बल्कि आपने तो श्रीधर फड़के के साथ भी काम किया है।
1: हाँ, उनका ओंकार स्वरूप सुरेश वाडकर ने गाया हुआ,
0: सुपर
1: डुपर हिट
0: एकदम एकदम,
1: तो उसका पूरा अरेंजमेंट मेरी है।
0: क्या बात है, और वो तो बहुत आज भी घर घर में बजता है।
1: हाँ। और उनका श्रीधर जी का और एक बढ़िया एल्बम आशा जी ने गाया हुआ,
0: हाँ,
1: ऋतु हिरवा नाम का।
0: जी जी।
1: तो एक्चुअली वो एल्बम का पूरा अरेंजमेंट श्यामराव कामले करने वाले थे।
0: हाँ हाँ।
1: बड़ा अरेंजर, तो लेकिन चार गाने को उन्होंने अरेंजमेंट करके हमको दिल लिख के दिया, उधर भी मैं और सूरज।
0: अरे वाह।
1: क्योंकि अब एक बार मैं भूल गया बोलना, पहला अरेंजमेंट हम लोग ने किया ना जो,
0: जी,
1: तो एक साथ किया हम लोग ने उज्जवल सूरज नाम से।
0: अरे वाह वाह।
1: फिर बाद में अलग अलग करने लगे, पर
0: क्योंकि
1: पहले
0: जो आपका मूल नाम है आपको
1: उज्जवल। हाँ, मेरा नाम उज्जवल है
0: जी,
1: और उसका सूरज।
0: वाह वाह।
1: तो उज्जवल सूरज नाम से हम लोग ने काफी काम किया,
0: लेकिन कितना सुंदर है उज्जवल सूरज।
1: और ये मौका हम लोग पहला अरेंजमेंट का मौका हमको दिया कवि शांताराम नांदगांवकर, मराठी के जाने माने कवि है
0: जी,
1: शांताराम नांदगांवकर जी।
0: अच्छा।
1: उनका एक कुछ टीवी का काम था जिसमें सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे लोग गाने वाले थे, अनुराधा पौडवाल वगैरह।
0: हाँ हाँ।
1: उसमें ये गाना इन्होंने भी गाया था, यशोदास ने भी गाया था।
0: वाह।
1: तो वो पहला मौका उन्होंने दिया, तो ऐसा तो काम चलते रहा
0: जी। बल्कि मुझे ये पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आपने चार बड़े आयोजन बजाए।
1: चार बड़े फुल प्रोग्राम यानी कि
0: साढ़े तीन घंटे के,
1: साढ़े तीन घंटे के, यानी पहला में 11 बजे परेल का दामोदर हॉल है।
0: नहीं, लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका बताइए, ये कैसे हुआ कि एक ही दिन में इतने सारे कार्यक्रम होने लगे?
1: मेरा एक साथी बजाने वाला जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजाता है, रिकॉर्डिंग नहीं बजाता है, अनिल गोसावी नाम, तो मुझे बोलता था आज मैं 3 शो बाजू ले।
0: हाँ।
1: मैं बोला 3 शो कैसा बजा सकता है, रिदम वाला है उसका स्टेमिना क्या होता है, तो मुझे भी कभी मौका मिले
0: जी
1: तो मैं भी बजा लूं। तो एक दिन मौका आ गया कि 11 बजे परेल में, 3 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर, अलग अलग प्रोग्राम।
0: हाँ।
1: यानी कि सप्तरंग नाम का प्रोग्राम 11 बजे बजाया।
0: हाँ।
1: 3:30 बजे अशोक हांडे का मंगल गाणी दंगल गाणी नाम का बड़ा प्रोग्राम,
0: बहुत मशहूर। हाँ।
1: फिर 8:30 बजे अरुण दाते और अनुराधा पौंडवाल।
0: हाँ।
1: उनका शुक्र तारा बजाया, और रात को 1:30 बजे वो हमारे पास एक उत्सव होता है साई बाबा का, उधर हिंदोले स्वरांचे नाम का बड़ा प्रोग्राम बजाया
0: एक ही दिन में। अच्छा, चार।
1: हाँ, और सबके संगीत संयोजन, 3 प्रोग्राम के संगीत संयोजन मेरे थे।
0: टेंशन नहीं हो रही थी यहाँ से वहां भागना है, ट्रैफिक है ये सब?
1: तब इतनी, अभी ये 91-92 की बात है
0: जी जी,
1: तब इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वैसे, और साथ में एक म्यूजिशियन की गाड़ी थी जो कॉमन था मेरे साथ। तो वो आसान हो गए। तो उस दिन एक दिन में मेरे ख्याल से मैंने 130 गाने बजाए,
0: अरे बाप रे, एक दिन में 130
1: 130 गाने
0: गाने।
1: बजाए, और वो विदाउट एनी नोटेशन। उस वक्त
0: हाँ
1: बाहर नोटेशन, क्योंकि मुझे क्या नोटेशन पढ़ने को इतना लंबा का दिखता नहीं है,
0: जी,
1: तो वो सब मुझे मेमोराइज करना पड़ता है।
0: ये तो और कमाल की बात है कि
1: हाँ,
0: इतना सारा अपने सब कुछ आपकी स्मृति में रह गया।
1: एक बरस तो मैंने हमारे मराठी में जो विसुभाऊ बापट नाम के हैं,
0: जी,
1: तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजाए फुल घंटे पर।
0: अरे बाप रे।
1: रविंद्रनाथ नाट्य मंदिर में पहला शो सुबह 6:30 बजे,
0: हाँ
1: दूसरा 9:30 बजे,
0: हाँ
1: तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे, और पांचवा रात्रि 9:30 बजे।
0: अरे बाप
1: एक
0: रे,
1: ही
0: तो
1: स्टेज पे
0: ये
1: फुल
0: स्टैमिना
1: प्रोग्राम
0: कहाँ से लाते हैं आप?
1: तब था, ये भी 20-30 बरस पहले की बात है।
0: क्या बात
1: अपने
0: है।
1: आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूं क्या, मुझे
0: हाँ, आप चुनौती देते थे।
1: ही देता तो। हालांकि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती
0: जी, हमने सुधीर फड़के जी को याद किया तो उनका एक गाना सुनते हैं।
1: है। ज्योति कलश सुनिए।
0: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश। चल,

0: मेरा फ्रेंड,
1: अच्छा
0: तो उनके पहले तो कुछ काम, और शायर साहब मेरे पिताजी को अच्छा पहचानते थे,
1: हाँ
0: क्योंकि पिताजी के पिक्चर का जो जो मैंने जिक्र किया ना फकीरा, उसका एक फोक का गाना था,
1: जी
0: देवी का गाना, वो शायर जी ने गाया था, साबड़े जी ने।
1: जी
0: तो उस टाइम तो उनको मालूम था अप्पा ये लाव रामबाबू का लड़का है। तो फिर और मेरी उनका एक बड़ा दूरदर्शन ने प्रोग्राम किया महाराष्ट्र की लोकधारा,
1: हाँ
0: तो एक तो वो प्रोड्यूसर जी थी किरण चित्रे, उसको हम लोग ताई बोलते थे, किरण ताई। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और साबड़े साहब ने अपने देवदत्त ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया अपने पिताजी के पास कि आपको कोई काम देना हो
1: जी
0: जाएगा अच्छा।
1: जी
0: और तब से उनका बहुत काम किया मैंने, और सीखने को खूब मेरा फोक म्यूजिक
1: जी
0: एक एक जो समझाते थे वो, ये ऐसा है, ये क्यों है, तो ऐसा है, क्यों है, ऐसा है,
1: वाह।
0: तो बहुत सारा मिल गया उधर से।
1: जब फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो
0: हाँ
1: कोड़ी गीत आपने किए, आनंद शिंदे मिलिंद शिंदे वाले।
0: हाँ कोडिश गीत किए, लेकिन वो जो वेसाव करके जो कोले गीत ज्यादा पॉपुलर हो गए
1: जी
0: वो मैंने नहीं किए। हाँ
1: अच्छा
0: वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, आनंद शिंदे के वगैरह कोले गीत इतने पॉपुलर नहीं हो गए,
1: हाँ
0: उनके जो पॉपुलर हुए एक गणपति के गाने पॉपुलर हुए, तो
1: जी, एक
0: क्योंकि
1: पूरा
0: उस
1: दौर था।
0: हाँ क्या हो गया उस टाइम मुझे कंपनी के 5 कैसेट्स मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री, और बहुत कैसेट उससे सब लाया था मैंने, ओंकार स्वरूपा घर में लाया, तो बहिणा भाईया एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड।
1: मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जंबो जेट गा रहे हैं,
0: हाँ
1: वो क्या है
0: अशुराज में एक गाना था
1: जी?
0: रेलगाड़ी नाम का,
1: हाँ
0: अशोक
1: अशोक
0: कुमार जी
1: कुमार,
0: ने
1: दादा
0: गाया
1: मुनि ने
0: था,
1: गाया।
0: दादू मोनी ने गाया। तो वो सुन के मेरा एक फ्रेंड है, अभी बड़ा पत्रकार है मराठी में, उसका बहुत सारा फॉलोइंग है,
1: जी
0: भाऊ तोरसेकर नाम का,
1: हाँ
0: यानी उसके अभी सब्सक्राइबर 9 लाख 10 लाख है।
1: हाँ
0: हम लोग कौन है, वो रूपारेल का लड़का, मैं रूहिया का, तो लेकिन
1: हाँ
0: दोस्ती हो गई।
1: हाँ
0: तो वो गाना रेलगाड़ी सुन के उसको, और तब जंबो जेट आया था नया नया 67 68 वो जमाने में, तो उसको वो ये हो गया कुछ लिखा तो अच्छा गाना हो गया वो, तो पहले वो गाता था, फिर वो जब पत्रकार हो गया तो गाना छोड़ दिया वो, और लास्ट नियरली 50 55 ईयर्स वो मेरे प्रोग्राम में मैं गाना गाता हूँ।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो वो तो हम सुनेंगे आपसे जब, बल्कि आप तो आशीर्वाद का गाना भी बड़े चाव से गाते हैं, आपको क्यों इस गाने से बहुत लगाव है?
0: इतना एक अलग टाइप का गाना है वो,
1: वसंत
0: यानी
1: देसाई
0: हाँ
1: है।
0: वसंत देसाई का एक अलग एक्सपेरिमेंट है वो, यानी कि उसके पहले मैंने कैसा जो रैप सुना नहीं था,
1: जी
0: ये जो रैप आ गया तो बहुत मजा आएगा सुनने में, और
1: अच्छा,
0: बोलने में वो जो
1: और आपको
0: इतना
1: पूरा याद भी है?
0: याद भी है, लेकिन क्या है एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं,
1: हाँ
0: ब्रीदिंग का जो उसको पर मास्टरी चाहिए।
1: जी, सुनाइए ना प्लीज।
0: अब इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी कि मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
1: यस
0: रेल गाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक, अरे धड़क तो भड़क लोहे की सड़क, धड़क भड़क लोहे की सड़क, यहां से वहां वहां से यहां, पुलाए चाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा दान हरा मैदान, बूढ़ा किसान मंदिर मकान चाय को दुकान, अरे पिलपक दंडी केले पे झंडी, पानी का कुंड पंच का चूर्ण, झोपड़ी झाड़ी खेती वाड़ी, बादल दुआ मोटा कुआ, कुए के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल के हाट, हर गांव में मेला भीड़ जमेला, मेला टूटी दीवार तट सवार रेलगाड़ी। ये बहुत लंबा एक
1: बिल्कुल
0: ब्रीदिंग है
1: बिल्कुल,
0: वो
1: क्या
0: बोल,
1: बात है! अब जम्बो जेट सुनाइए।
0: तो जंबो जेट का थोड़ा सा मराठी होने से वो थोड़ा सा मेरे
1: जी
0: लिए आसान है। अरे जंबो जेट सोई, जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जंबो जेट सोई, अरे घराला धडक दाराला सडक, पकडली गाडी ने निघालो तडक, विमानतळावर ठोकतोय तर आणि भारत सोडून काढतोय पळ, उंच आकाशा मधले ढग चमकून पाही सारे जग, भेदून गेले एक विमान पंखावरती होऊन ताण, पंखाला त्या पंखे होते विमानाला शेपूट होते, वायुसागरी तरते बेट, जंबो जेट जोई।
1: वाह वाह
0: ऐसे
1: वाह,
0: 6 स्टैंजा है वो उसके
1: शानदार है ये तो, बड़ा लोकप्रिय हुआ।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। और का प्रोग्राम हो जाए तो, एक बार पुणे में प्रोग्राम था सुरेश वाडकर का,
1: जी
0: तो उनका महोत्सव होता था 3 दिन का,
1: हाँ
0: और 3 दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा केळकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर।

0: जी
1: और तीनों में मैं था।
0: हाँ, आप अरेंज कर रहे थे या बजा रहे थे?
1: नहीं बजा रहा हूं, तो मैं तो अब कीबोर्ड बजाता था,
0: जी
1: तो उत्तरा केलकर के साथ बजाने को गया, तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना मैंने
0: हाँ
1: गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई, तो कंपेयर बोला ये गाना है फरमाइश। मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं दे, तो मैं बोला नहीं कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविंद्र सैठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई,
0: अरे
1: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाडकर के प्रोग्राम में,
0: हंगामा हो गया।
1: हाँ 2, 5, 10, 15 चिट्ठी, तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने,
0: हाँ,
1: तो कैसा बोलते अरे अप्या अप्या बोल,
0: वो बहुत मजाकिया
1: हाँ
0: भी
1: मजा
0: है।
1: की बिल्कुल अप्या, अरे बाबा काय ते जम्बो जेट जम्बो केवड़ा चिट्ठे आल्या गा वो तू गा, वो खुद बोला, तो मैंने उस टाइम वो गाया था उधर। अरे
0: क्या नजारा होगा वो,
1: क्या
0: वाह।
1: वो खुद खुश हो गया, अरे क्या बात है बोल, तो क्या तेरा दमछा क्या है बोले
0: अच्छा,
1: याददाश्त भी अच्छी है बोला।
0: मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था?
1: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने ना,
0: जी
1: अच्छा अप्पा वड़ाकर एक नाम हो गया उधर स्टेज
0: हाँ।
1: पे, कि वो क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, क्या कर रहे हैं कुछ पूछते भी थे, वैसा मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आया आपको कुछ आया क्या क्या फलन है, तो उनको समझ ना एज ए सीनियर, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कि कुछ नोटेशंस की हम लोग को मालूम नहीं है वो, तो अभी हर एक को मैं कहाँ लिख के दूँ, तो एक प्रपोजल आएगा क्या पुस्तक ये करने का, और वो मेरे गुरुजी के पास गया प्रभाकर पंडित जी के पास गया कि ऐसा ऐसे आपको को बोलो ना नोटेशन का बुक ये करते हैं, वो मना कर रहे हैं, तो पंडित जी ने अभी गुरु का ही बोला रे कर दो ना, मतलब मराठी में बोला मास्टर मेरे लिए अला त्रास हो तो नहीं मैं हेल्प करूंगा, बोले तू लिख इनिशियल मैं चेक करता हूँ पूरा, तो ऐसे हो गया। 30-35 गाने का कुछ किया था,
0: जी
1: उसमें मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए समझो भक्ति गीत भावगीत एक्स वाई जेड,
0: हाँ
1: लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए,
0: हाँ
1: उसका नोटेशन भी मैंने उसको ऐड किया था,
0: क्या बात है, सुंदर
1: वंदे मातर और जनगण
0: जी।
1: मन।
0: मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का,
1: बिल्कुल
0: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए, हिंदी?
1: आर डी बर्मन का,
0: हाँ
1: तो मुझे है ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना वो,
0: एक चतुरनार।
1: हाँ एक अलग टाइप का गाना है, और दोनों गायक ने इतना अच्छा बढ़िया गाया है ना,
0: जी
1: तो वो सुनेंगे
0: बिल्कुल।

ಯಕ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ.

0: अंदर का गाय
1: अपा, मैं अब आपसे पूला देशपांडे की याद चाहता हूं। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
2: उनका एक एनसीपीए का प्ले था
1: जी,
2: उन्होंने लिखा हुआ, वामन केंद्रे का उसको डायरेक्शन था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानडे नाम के
1: जी,
2: बहुत ज्ञानी आदमी। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो ही म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड और इसमें मैं

0: हाँ
1: और रिदम में देवदत्त सावळे, शायर
0: जी
1: सावळे का लड़का,
0: जी
1: तो रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फ्लूटिस्ट भी एक्चुअली था
0: हाँ
1: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो वो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, ऐसे रिदम का और अप्पा को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग, वो NCPA में, वो स्टूडियो में, और 1:30 बज गया, हम लोग के कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए। और वो अंदर से आवाज आया, चलो अभी थोड़ा लंच करते हैं। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पुल देशपांडे बैठे हुए
0: ओ
1: सुन रहे रिकॉर्डिंग पूरा। और जो अंदर से आ गए तो अरे भोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के साथ में सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं। तो आए, वाह अप्पा खूब छान, ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले तुमचं है यंत्र हाताळू का थोड़ा सा, थोड़ा। तो मैं बोला आपको क्या बोले, थोड़ा सा उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया।
0: वाह
1: फिर बाद में क्या, लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं,
0: जी
1: तो अशोक जी रानड़े जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पुल देशपांडे बोले रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट, अप्पा बजा सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट पे है, हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बजवा लो इससे अच्छा
0: अरे
1: बजा रहे।
0: गजब
1: तो पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजाया था।
0: वाह वाह वाह कितना अच्छा अनुभव
1: हाँ
0: ये।
1: तो और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो एक मराठी में जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथा ही है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियोज आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी। तो हमारा मित्र है अभी नहीं है वो, आनंद था मोड़क नाम का,
0: जी
1: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूरा देशपांडे अंदर आ गए और मेरे
0: वाह
1: बाजू के कुर्सी में बैठ गए और मेरे को बहुत टेंशन आ गई, इतना बड़ा एक खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना
0: जी
1: और
0: जी
1: बड़े हारमोनियम, तो
0: जी
1: बोले फिर भी हो गया मेरा काम, अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है मराठी।
0: वाह वाह क्या बात है। अच्छा आप YouTube पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं
1: हाँ
0: अप्पन जी गप्पा,
1: हाँ
0: ये आइडिया कहां से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके हैं।
1: हाँ अभी 100th एपिसोड मैंने अभी डाला, एक 4-8 दिन हो गया अभी,
0: जी तो ये तो सेंचुरी हो गई
1: हो गई
0: भाई।
1: वो एक्चुअली क्या कोरोना के टाइम क्या हो गया,
0: हाँ
1: मेरे एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का,
0: जी
1: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है, तो वो बोला अरे तेरे पास इतना बोलने के लिए इतना काम किया है, तू ये कर ले ना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते हैं, कुछ मालूम नहीं, तो बोला मैं हूं ना सिर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
0: अरे गजब।
1: अरे मैं पैसा कितना लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बोला तेरे को
0: हाँ
1: आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, और तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है।
0: अरे गजब
1: तो वो चालू हो गया, फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे, और
0: देखते
1: वो
0: देखते।
1: एक योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चालू है अभी,
0: हाँ हाँ
1: तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में,
0: जी
1: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100th एपिसोड है मेरा,
0: हाँ वो आपने YouTube पे डाला
1: हाँ
0: है
1: यूट्यूब पे डाला है।
0: जी। 100 एपिसोड लोगों का क्या रिस्पॉन्स है
1: रिस्पॉन्स ऐसा अच्छा है लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है,
0: जी जी
1: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
0: अच्छा, अभी
1: हाँ
0: उसका इंतजार है।
1: इंतजार अभी अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन मैं उसको कर रहा हूं।
0: जी जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप अलग अलग
1: हाँ
0: लोगों को
1: हाँ
0: उसमें याद कर रहे हैं,
1: क्योंकि जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए।
0: कहानियां सुना रहे हैं,
1: हाँ
0: सब
1: कई कई मैं
0: चीजें।
1: बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी,
0: हाँ अच्छा,
1: तो जिस
0: अभी मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूं सुरेश वाडकर के एल्बम का, मन है खुड़े कसे।
1: हाँ वो देव साहब का एल्बम है, यशवंत देव का पूरा सोलो है, सुरेश का 8 गाने का सोलो है वो,
0: जी
1: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वॉयलिंस, ग्रुप वॉयलिंस, क्योंकि
0: हाँ
1: मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वॉयलिंस मिलते नहीं है,
0: जी जी
1: बजट बढ़ जाता है ना, 10-12 वॉयलिंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छे है जो जो कवि के है वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत
0: बहुत लोकप्रिय है।
1: वायलिन्स के तीन गाने जो है वो मुझे, तीनों गाने उस पे, एक वो गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उसमें।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक एपिसोड वो गाने पे है
0: जी। अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
1: बचती थी अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी फ्लुएंसी कम हो गई
0: जी,
1: फिर भी अभी मैं लाइव प्रोग्राम बहुत बजाता हूँ।
0: हाँ,
1: लेकिन पहले क्या, मैं एज ए लीड बजाता था
0: जी जी,
1: तो अभी थोड़ा सा सपोर्टिव,
0: हाँ
1: वो हो जाता है थोड़ा सा, अभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना
0: जी,
1: कभी अटक जाता है थोड़ा सा।
0: संगीत की दुनिया में जो आधुनिक बदलाव हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सब कुछ बहुत कृत्रिम होता जा रहा है?
1: ये तो होना ही था क्योंकि सब आर्टिफिशियल है, अभी एनालॉग रिकॉर्डिंग और डिजिटल में वो फर्क आएगा। लेकिन जैसे प्लस है उसके माइनस भी है
0: जी।
1: अभी जैसे समझो, पहले पहले में जो कैसेट्स किया उस टाइम 10 गाने करने पड़ते थे, क्योंकि C60 का कैसेट होता था तब, 60 मिनट का कैसेट, तो कम से कम ये साइड 5 गाना, वो साइड 5 गाना। लेकिन वो एक एक कैसेट हम लोग ने 4-4 दिन में मास्टर दिया है, मास्टरेटिव, क्योंकि दो ट्रैक, पहले तो एक ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ तो करता था फुल ट्रैक रिकॉर्ड, फिर 2 ट्रैक हो गए, फिर 4 ट्रैक हो गए, उसी टाइम जो रिकॉर्डिंग के टाइम में बैलेंस होते, 4 ट्रैक जब हो गए तो एक ट्रैक पे रिदम पूरा बैलेंस हो जाता था, एक ट्रैक पे मेलेडी बैलेंस हो जाती थी, तभी एक ट्रैक वॉइस हो जाता था, तो मिक्सिंग को बहुत कम टाइम लगता था
0: जी जी।
1: अभी ये डिजिटल के हिसाब से क्या करते हैं, एक लाइन है तो उसका ऑप्शन 10 ऑप्शन हो,
0: बहुत सारा पंच करते हैं।
1: हाँ, फिर बाद में उनको ही पता नहीं चलता है कौन सा अच्छा है। हाथ लगा मेरे को,
0: कोई बात नहीं।
1: तो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है, बाबा इसमें से अच्छा कौन सा है। लेकिन मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर को बोला था, तुम्हें 10 ऑप्शन लिए क्यों, एक लिया, 2 लिया 3 लिया
0: जी,
1: लेकिन उसमें से एक तो अच्छा है ना,
0: हाँ,
1: तो दूसरे 2 हटा दो ना उसी टाइम।
0: हाँ,
1: तू 10 रखेगा फिर बाद में तेरे को याद नहीं रहेगा कि कौन सा अच्छा है, तू सब सुनते रहेगा। एक गाने के मिक्सिंग को 1.5-2 घंटा लगना चाहिए, तो 6-8 घंटा लगता है,
0: कई कई दिन लगाते हैं।
1: फिर एक दिन में एक गाना हो जाता है और क्या।
0: अपा, अब बातचीत जो है वो लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और मैं चाहता हूं कि अपनी पसंद का कोई एक गाना हमारे सुनने वालों को समर्पित करें आप।
1: एक तो श्री रामचंद्र जी का वो मेरे वतन के लोगों, लता दीदी का।
0: वाह,
1: श्री रामचंद्र के साथ मैंने काम किया 1 बरस, वो हमारे मुख्य थे जब वसंत से गुजर गए
0: जी
1: 75 को, उसके बाद 1 बरस अण्णा ने, जिनको अण्णा बोलते थे सब इंडस्ट्री में, अण्णा ने वो उनके जगह काम किया है। और ये गाना है ना, कुछ अलग लगते है गाना सुनने के बाद, वो इमोशंस अलग हो जाती है, तो वो गाना सुने
0: जरूर। कवि प्रदीप की रचना है, इसे लता जी ने गाया था
1: बिल्कुल,
0: और नेशनल स्टेडियम में जब दिल्ली में ये गाना लाइव हुआ था तो वो एक इतिहास है। अपा, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन की इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी, नई पीढ़ी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: 2-3 चीजें हैं, एक तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए,

0: आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
3: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शोभा जोशी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब की एक और रचना, संगीत शांतनु मोहित्रा का।

शोभा जोशी की आवाज में अभी आपने ये मिर्जा गालिब की रचना सुनी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

झुकाने को सर संगे दर मांग लाए, ना कुछ मांगना था मगर मांग लाए। मदीने गए चश्मे तर मांग लाए, मसीहा से दर दे।

मोहम्मद हुई है न होगी मिसाले मोहम्मद। सुनो ऐ मुहिबाने आले मोहम्मद जिसे दे

याद से तलमला कर, गमे इश्क की आग दिल में लगा कर, मोहब्बत को अपनी तमाशा बना कर, खरीदार हुस्न नबी मिस्र जाकर, ज़ुलैखा से दर

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब का संगीत, गैफ भोपाली की रचना। गायिका है परवीन सुल्ताना और फिल्म का नाम पाकीज़ा। हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी गाई ये ठुमरी।

0: ये आवाज थी परवीन सुल्ताना की।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए संत सूरदास का ये भक्तिपद, स्वर घनश्याम वासवानी का है।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ बेचा
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सूरदास के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई का भक्ति पद। इसे आवाज दी है डॉक्टर मलिका बनर्जी ने।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश, जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अख्तर नाज़मी का ये ग़लाम।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यूसुफ आजाद कव्वाल और उनके हमनवा की गाई अभी आपने ये कव्वाली सुनी। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
0: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
0: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: तो श्रोताओं, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओं, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
2: बिल्कुल।
0: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी,
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
2: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
0: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती

0: तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती,
1: जी
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
1: जी
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
1: जी
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
0: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
0: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तो तुम्हें तो जो

0: जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
2: होशियार,
0: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
3: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, तब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
5: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
5: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है।
5: क्योंकि
2: तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
5: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
5: हाँ,
2: ठीक है। बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
3: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
2: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
3: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
2: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
3: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
2: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
3: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी।
2: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
3: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
2: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
3: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
2: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
3: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
2: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
3: लगभग 10,000 बार।
2: 10,000 बार?
3: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
2: अच्छा,
3: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
2: अरे वाह।
3: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
2: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
3: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते। और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
2: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
3: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
2: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोलकर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
3: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SGPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUEP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पर, करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान।
5: नई उड़ान।
4: हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेल यात्रा का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा हुआ, गायिका चित्रा के एस और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल, फिल्म का नाम है नोटबुक, गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और एसिस कॉर्प।

यादों की महफिल कार्यक्रम की यह है अगली पेशकश। रविंद्र जैन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आवाज भूपेंद्र की, फिल्म का नाम दासी।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई दी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने शहर में खुश हैं ना, या कहीं और गए हैं घूमने किसी और जगह? बताइएगा जरूर। हाँ, ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ, आप समझ गए होंगे। जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो हमारी बात समझ में आ गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज पर नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भाई हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में खुश हैं या नहीं। वैसे तो हम अपने शहर में खुश रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी रहते, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आज हम जो ये सुरीला सफर है उसमें एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक धड़कन होती है, अपनी बोली, अपना रंग, अपना खान पान, अपना मौसम और अपनी एक कहानी होती है। और जब यही शहर या स्थान फिल्मी गीतों में उतरते हैं तो ये संगीत हमें उन गलियों में, उन चौबारों में, उन जगहों तक ले जाता है जिन्हें शायद हमने कभी देखा भी नहीं होता, है ना? तो आइए सुरों के साथ आज निकल पड़ते हैं शहर दर शहर, गीत दर गीत। तो अब आप समझ गए हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं तो हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज पर नहीं है वो समझ जाएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, सुरीला सफर में आज सफर सिर्फ गीतों का नहीं है, शहरों और जगहों का भी है। तो आज जरा इन जगहों की भी सुनते हैं, कौन किसे अपने यहाँ बुला रहा है। आज पता है ये शहर, ये जगह आपस में बात कर रहे हैं। क्या सुनिए आप भी। अरे सुनिए, इतनी दूर क्यों खड़े हैं? आइए ना मेरे बीकानेर, कभी मेरी गलियों की रौनक देखिए, कभी मेरी हवाओं की गर्माहट को महसूस कीजिए। बीकानेर भाई, अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन रंग और शान देखनी हो तो मेरे जयपुर आइए, मेरी गलियों में घूमकर मेरे रंग देखिए। और वो जयपुर की, आखिर गीतों में मेरा नाम यूं ही तो नहीं लिया जाता। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मन हुआ कि मैं भी कुछ कहूँ। आइए कभी मेरी वादियों में, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, झीलें, ठंडी हवाएं, मैं तो गीतों में भी कहती हूँ कश्मीर की कली हूँ मैं। मुझे देखने के लिए बस दिल में थोड़ा सा मौसम होना चाहिए। अरे भैया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कभी बनारस भी आइए, मेरी गलियों में घूमकर देखिए, गंगा किनारे बैठिए और जाते जाते आहा, एक पान तो खाते जाइए। अगर मेरे यहाँ आए और बनारस वाला पान नहीं खाया तो सफर अधूरा ही समझिए। और मेरा क्या, मेरे बाजार में किसी का झुमका भी गिरा था, याद है?

या भूल गए? भाई तुम्हारे झुमके की बात चली तो मुझे भी याद आया कि ताजमहल की मोहब्बत को देखे बिना आगरा से लौटना मत। हुजूर आप सबने बुला लिया तो मुझे कैसे भूल गई? कभी लखनऊ आइए, तहजीब से मिलिए, अदब से मिलिए। यहाँ शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिल्ली कहे मेरे घाघरे की बात ही कुछ निराली है, हर अदा मेरी मतवाली है। और जनाब इतना सफर जब कर ही लिया है तय तो मेरे पास भी आइए। समंदर है, सपने हैं, रफ्तार है, और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान। और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की इबारत? तो चलिए घूमने निकलते हैं इन्हीं शहरों की गलियों में।

जी, तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा, अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसी लगी वहाँ की आबोहवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन? और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेहिल व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहाँ बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहां राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है, बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं, तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है, आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं, लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखने की बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल। कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहां के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गाय की याद दिलवा दी, जो मांड गाय का पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आहुनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर, और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूं। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूं अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूं और तनोट बॉर्डर भी घूमा हूं, ऊंट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं दुनिया एक श्रोता लिखते हैं कि वहाँ फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा, जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहाँ कहाँ घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें, और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई, हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है।

बताइएगा, अगर आता है तो कौन सा गीत है वो, उसका जिक्र भी कीजिएगा। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप किसी खास जगह घूमने जाना चाहते हैं, आगे प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे और उस खास जगह को देखेंगे, या फिर कोई एक शहर जो आपको बेहद पसंद है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक एक शहर, एक जगह का नाम, एक गीत, बस इतना ही, ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं को शामिल कर सकें। आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। आप अपने उस शहर का नाम बताइए या उस गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत। अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं, या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है, या आप जिसे बहुत मिस करते हैं, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है, और ये फिल्म है जंगली।

हमारे श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हूँ कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या कब कहाँ हम पहुंचेंगे, ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहां बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमेर का किला बार बार देखने जाती हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए, जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता। मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहां पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्म भूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, धार्मिक सौहार्द की नगरी है, पुष्कर की विश्व प्रसिद्ध, संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहाँ खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कड़ी कचौड़ी मिलती है और कड़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, सोन हलवा मिलता है और मुंबई मेरी जान है। लालबाग चा राजा गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूं तो हिंदी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो, लेकिन एक गाना जरूर मेरे जहन में आता है जहां नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुंच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। जी हाँ, बम्बई से गई पूना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएं किसी भी शहर में अपने शहर को लिए ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा अपना शहर बाहें पसारे हमारे स्वागत के लिए तत्पर खड़ा मिलता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, बात चली थी स्वाद की, तो फिर ये स्वाद तो हम कभी नहीं भूलते हैं, यानी पान है ना। तो चलिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हाँ हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी एक गीत में आता है, फिल्म जानेमन इलाहाबाद में पैदा हुई में जबलपुर में पली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना अभी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूँ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा, इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ न कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीजें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने

आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?

0: झुमका घिरा रहे बरेली के बाजार में। तो चलिए, बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खां की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूं जहां से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से, और अभी पुणे में हूं, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वही एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती के एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूं जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाना ना नखरा बदा, नाना नासो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है वडोदरे लावो लऊ ने करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह, क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश रखड़ीश हूँ राजकोट पणतारी साथे नहीं रहू मने मंगाविश तू लोटरी। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में, और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं, हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। सच मानिए बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है, बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहाँ, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूली गई और आगे निकल गई। चलिए सुनते हैं इस गीत में, और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज विशाल ददलानी की आवाज है, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राज्य का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गाँव तो अपना है ही। और वही एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूँ और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूँ और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वही एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गई लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियां, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अभी तो पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई, कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो, पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ, पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है, जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम CID।

0: मेरी जान।
1: जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए, है ना? क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफर को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ये सफर। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्ते, आज त्रिवेणी में हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कला होती है, जो जितना अधिक कार्य कर लेना चाहता है और जो जितना अधिक पढ़ता है उसमें उतनी अधिक जिज्ञासा होती है, उसे यदि सही समय पर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं या उसे क्या करना है इनका व्यावहारिक ज्ञान मिल जाए या ढूंढ लें, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, संवार सकता है अपने सपनों को।

अक्सर हमारे दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न चलते रहते हैं। हमारे इतने सारे विचारों में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इनमें अनगिनत विचारों के बीच हमें अपने उन विचारों को चुनना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी निर्भर होगी। वो विचार हैं अपने लक्ष्य का विचार। जो भी हमारा लक्ष्य है उसका विचार, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से तर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में

0: आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
2: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा

0: कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।

0: सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिन

0: दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। और जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बानी कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं साल।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती, तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
1: बिल्कुल। और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: क्या बात है, और बताओ कैसे?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
0: बिल्कुल दुखता है,
1: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
0: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है
1: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
0: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं। तो
1: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं। ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो एक अंतरिक्ष है एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं। और साथ ही इतनी रहस्यमय दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है। अभी भी हम
0: ये सब चीजें
1: चौंक जाते हैं,
0: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है।
1: बिल्कुल।
0: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है, कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
1: कहते हैं ना जो इंसान है वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बना है, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो।
0: बिल्कुल, है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है।
1: हाँ।
0: कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि दो महीने पहले, एक हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह
1: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई।
0: तो इस तरह के कुछ यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने वाले हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
1: और जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
0: चलो अब गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं, तो वहां की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल सी
1: ठंडी
0: हवा
1: हवा।
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है
1: बिल्कुल।
0: ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिखकर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अथाह नीला विशाल रूप, क्षितिज जहां आकर झुकता है, खिलती जहां सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना, उसे जानना शुरू किया, तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका है। आरती,
1: बिल्कुल। और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल। और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो
1: बिल्कुल।
0: सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक, अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं, लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती हैं, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से

0: पहुंचती है, और बहुत ज्यादा जो गहराई होती है वहां पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जरा सोचिए, सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
0: बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहां पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
1: और देखो, हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहां की जगह पर उतर कर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताजा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
0: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित भी हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत से जुड़ा हुआ है।
1: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
0: बिल्कुल। पहली बात तो सबसे बड़ी चीज है, जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना, वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके
1: से। सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
0: बिल्कुल। और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है, और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है, जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
1: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो आरती देखो हमारे साथी क्या लिखते
2: हैं
1: बताओ।
2: तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार है, जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है बल्कि रहस्यमय जीवन तो अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं, और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है, लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियां इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही दो लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहां ऐसे बायोल्यूमिनेंस जो जीव होते हैं वो रहते हैं जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, मतलब जहां पर पानी के सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती वहां पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है जो इतनी विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहां लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहां पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट कर धल लइयो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो बाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
1: सहेली
0: तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौने की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है, तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था, उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी। इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं, बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची। यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी, उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले, और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: कितनी गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है, तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, उस छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे, तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल। आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
3: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
3: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझ में एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये
4: है?
3: चाय पीने के लिए गाने
4: मना
3: लेते हैं।
4: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिख कर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू

0: गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंद्र की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
0: सब बजते हैं, और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलियां करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब, किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवन साथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त, दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है, ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हो और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
0: है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठे, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हो सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए हैं।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही
1: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत या जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहां कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं। हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती है और बहन को डांटने लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त
1: बिल्कुल
0: पर हो गया है,
1: दूर
0: तो
1: पास
0: हाँ
1: सारे श्रोता रहते ही
0: जी,
1: हैं।
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और
0: और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़।
1: एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
2: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो। कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी। संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी। वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला। ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे। उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जय हिंद। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटिफुल शो टुडे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहां से शुरू करूंगा। इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा। आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं, तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की, हम बच्चों के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज सीधी लाइफ में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर, हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहां भी काम किया काफी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो जॉब कर सकते थे, माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें।
0: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई तो क्या पहले से कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है, और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसे हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना, सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना, कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एनवायरनमेंट वीजा वी आउटसाइड जो मैं देखता था, जैसे जो मुझे किसी, तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर ली है। फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहां पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूं, फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था,
0: पैशन,
1: और सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है, तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: फ्लाइट पे आने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा,

0: फ्लाइंग से आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में. उसमें मुझे मौका मिला काफी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करने में, चाहे आप पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए. तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज्यादा, मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था. पर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले. फ्लाइंग में फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं. बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का. सियाचिन ग्लेशियर का फ्लाइंग का मतलब है ये मोस्ट हॉस्पिटेबल टेरेन इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर. जहां टेम्परेचर होता है -50 से -60, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करो तो वहां की फ्लाइंग, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे
1: जी.
0: जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते थे. तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहां पर आपके एक्सीडेंट क्यों होते हैं. कहते हैं जो आप हेलीकॉप्टर यहां उड़ा रहे हो इस जगह के लिए नहीं बना है ये. पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे. और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर. कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, मेरे को लगता था मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है.
1: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीजों पर और ज्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो खतरनाक एरियाज में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीजें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था. तो जैसे कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे तो वही चीज मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज थी जो आप, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे. तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं. हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, नंबर है 9868107070. और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के. और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर.

0: 102.6 एशिया नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो का प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह की ट्रेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था, हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए ट्रेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था
0: जी,
1: तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर, ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
0: तो
1: पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
1: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60 मैंने इसलिए बोला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहां पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
0: तो सर, उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
1: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों की नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 to 5:30 हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। 11-12 बजे के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है

0: जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3। अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। सो हेलीकॉप्टर पायलट्स का ये प्रोबिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
1: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
0: तो बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब किसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग कर रहा है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे,
1: okay.
0: ताकि जो पायलट ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई वो होता है क्रैश होता है
1: जी.
0: तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के।
1: क्या बात है सर, ये
0: ट्रेनिंग का तरीका है। तो हम लोग अपना तो उस तक कहां सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है। तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी। तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है जब हम लैंड करने जाते थे तो जो 17,000 फीट 18,000 फीट पे
1: जी
0: क्या हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: जी जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता है,
0: इनकार कर देता है फ्लाई की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
1: अच्छा,
0: उनके बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करे हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह वाइट वाइट वाइट, तो एच क्या करते हैं बाहर निकल के, एच का पेट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर आ सके। हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी, तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रेवास होती है।
1: मतलब
0: तो एक बार आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो एयर बस्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना है, और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है।
0: कुछ सेकंड मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते।
1: अच्छा,
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था। तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड, मे बी अप टू अ मिनट और टू, तो हमको इमीडिएटली वापस।
1: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है।
0: हाँ।
1: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है, और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना।
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स में होते थे। मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था, कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें जो
0: क्रेवास,
1: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं।
0: बिल्कुल।
1: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयरबस
1: एमिनिशन है, कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली एवरी डे।
1: सर ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूं सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा अगर कैरियर रहा
1: जी।
0: ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: कंप्लीटली सेटिस्फाइंग, जोश जुनून से भरा हुआ।
0: Absolutely.
1: सर आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं।
1: क्या बात,
0: कभी भी नहीं।
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डेयरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बात सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो ये जो
0: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़के नहीं देखता। ये मैं नहीं हूं, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है।

0: हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में एक बार मेंटल, हमारे को ना फिजिकली टफ तो जितना होना होना है, हमारे को मेंटली बहुत टफ बनाया जाता है। अब कोई भी ऑफिसर मेरे को, तो मैं तो फॉर्चुनेट था, मैं वहां पर था, मेरी जगह और भी वही पायलट है मेरे फ्रेंड जिनको सीएचएम में नहीं फ्लाइंग करने का मौका मिला।
1: अच्छा।
0: वो भी अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया।
1: क्या बात है सर, मतलब सबकी एक ही मेंटालिटी होती है, एक सोच। और सर जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से देश सेवा से भरपूर, और जो एक होता है ना कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए आप, तो जनता से भी आप कुछ, जैसे एक एक सोल्जर है तो वो चाहता है कि उसको भी तो वो एप्रिसिएशन और वो जो है ना वो प्यार मिलना चाहिए।
0: देखो मिलता है, अब आप जब जनता देखती है कि हमारे जनता को कब पता चलता है, जब से कारगिल जैसी लड़ाई होती है, जैसे सिंधूर जैसी लड़ाई होती है, ऑफ सिंधूर होता है, तब उसको लगता है कि कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर। उसके अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है, अपना काम कर रही है, अपनी तनख्वाह ले रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं तभी हम आराम से बैठते हैं।
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत। तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं।
0: आपकी भर से, आपकी
1: सर, मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे, मुंबई से इन्होंने मैसेज किया है।
0: शुक्रिया।
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते, जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा,
0: तीन दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को,
1: ओके,
0: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिरे, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ट्रेन पाए,
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग
1: नहीं फ्लाई कर सकता जी। ये है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर। जय हिंद सर, इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद। ग्राम गेंडा खाली नंबर एक, कनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का, गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली एआईआर 102.6, सैल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच सर।
1: और ये है विकास थापर सर, डीएलएफ 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ डीएलएफ 2 फॉर मेनी इयर्स, ही इज आल्सो प्रेजिडेंट ऑफ आर आरडब्ल्यूआई डीएलएफ 2।
0: थैंक यू वेरी मच विकास जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं
1: जी जी।
0: तो ये थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये है प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका पीएबीटी टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो टेस्ट में आप क्लियर हो जाते हैं, जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट में जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
1: सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन्होंने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं,
1: आर्मी पायलट की।
0: हाँ
1: जी जी
0: हाँ जी,
1: एयरफोर्स की नहीं।
0: हाँ जी आर्मी नहीं, आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: हाँ जी
1: जी जी, तो सर सभी को आईएमएस ही होना
0: नहीं, ऐसा नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले एनडीए होता है, कोई एनडीए के बाद हम तीन आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स कोई आर्मी में चला जाता है,
1: राइट सर।
0: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था
1: जी।
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो। अगर एयरफोर्स में अगर एनडीए में जाते हो तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हैं तो चले जाएंगे,
1: राइट सर। सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास, अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, उन्होंने दोबारा मैसेज किया।
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी। और त्रिचुपल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का। और यहां पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपके लिए ये एक्साइटिंग ट्रैक का भी सिलसिला रहेगा जारी, आप हैं शायद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रयाम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था, वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहां पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था, तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको
1: बल्कि बताऊं। अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में तो हमें पता चला एक गन पोजिशन थी जिसपे एवलॉन्च आ गया था, तो वहां के 14 सोल्जर्स उनके वो उनके नीचे उसमें चपेट में आ गए, तो हमको बोला गया कि वहां पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ के अंदर जब हम हेलीकॉप्टर जा रहे थे हमारे उधर, तो वहां पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे उतने साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर की वॉटर रिमेन्स मैंने पिछले हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते। हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि वॉटर रिमेन्स फैमिली तक पहुंचे ताकि उनके अच्छे से लास्ट राइड्स हो सके। जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की है ना, मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में, और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था। जब हम लैंड कर रहे थे जहां पर पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेन्स, एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेन्स को नीचे लेके आए, फिर वहां से आगे B-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेन्स इन फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
0: टचिंग। आपके साथी सिपाही जवान बिल्कुल जब वो शहीद हो गए तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
1: एब्सोल्युटली
0: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी और शहीद हुए। सर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझे हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
1: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था, मुझे पता है ज्यादा हम लोगों के पास टाइम अब भी नहीं है, बेशक आधे घंटे से ज्यादा। कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है
0: जी।
1: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं, इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है। हम सियाचिन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाई, डॉक्टर्स वगैरह, तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को, अगस्त 98 की बात कर रहा हूं, कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, 98 अगस्त की बात कर रहा हूं, जब इंडियन आर्मी अब हम नीचे उतर आए वो लोग पीछे चले गए, हमारे आने के बाद वो लोग वापस आए अपने एरिया से, हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी। तो वो जब कैप्चर कर ली तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कैप्टन सौरभ कालिया
0: जी,
1: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया गया, मतलब मारे गए थे बेचारे। और सेक्टर्स में भी हमको बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई, तब हमें पता चला मार्च 99 की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं। तो हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपने यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए, हमारी 6 गन्स सियाचिन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी, रेजिमेंट हेडक्वार्टर 10-6 गनों को, और बोला गया आप जल्दी से जाइए, पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया
0: जी।

0: कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप।
1: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9200 गोले फायर किए थे हमने।
0: ओके।
1: हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफोर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी। जैसे मैंने आपको बताया छह गने हमारी सियाचिन में थी और छह गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल दो साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किया, ये रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9200। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती, हम पास में बैठे होते तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स द एंड जाके। तो हमने लगातार फायरिंग किया।
0: तो वो सर जो मोमेंट्स रहे वो भी अपने आप में, जैसा आपने बताया कि वो आपके सामने सब कुछ हो रहा था, वो वॉर जोन में जब आप थे, तो वो जो कारगिल का जो एक्सपीरियंस आपका था उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में, और एक चीज और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर द रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या
1: है? मैं बताता हूँ। ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूँ। तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन द मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी जो लीला पास 15-16 फीट बर्फ थी।
0: okay.
1: हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी। फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इनटू द कारगिल, जब हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके आपको बताया ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए।
0: okay.
1: हम लोग सब हैरान हो गए, उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे। तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था।
0: अच्छा,
1: हमारे डॉक्टर क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं, टाइगर होल्ड हो या 5.1540 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकालना, और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारी बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर बैठे हैं, तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है।
0: इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
1: हमारी
0: हिल्स, उनको रेड हिल्स का नाम दिया गया।
1: मैंने रेड हिल्स का नाम दिया थी, मैंने बोला है कि उनको पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर, पूरा एरिया पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी और ब्लू मीन्स हम। तो अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग।
0: सर वहां की कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
1: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारी रोड्स को देखती थी, मतलब रोड देख रही थी, और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए। उन गन्स को बिना आवाज किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था, और मतलब
0: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता
1: था। होता था, वो फायर करते थे।
0: अच्छा,
1: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ, रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, ये छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी छोटी सी रोड पे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं। मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था, और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और बोफोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई। तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफोर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया। तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी।
0: अच्छा,
1: और जहां से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी उसको भी उड़ा दिया, और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस मिली।
0: तो मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था, और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकाले।
1: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की, ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
0: जी
1: इन्फेंट्री अटैक जाता था, इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी, आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम चल जाता, तो वो हिल्स होती है ऊपर, जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना, कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह।
0: बिल्कुल,
1: हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे, बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके। हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे, तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहां इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ, क्या सक्सेस सिग्नल हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे। अच्छा। कि हमको सक्सेस मिला है कि नहीं।
0: जी,
1: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे।
0: और सर ये लगातार बहुत दिन
1: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा।
0: और सर इस दौरान जो फौजियों का जो मनोबल था, सिपाहियों का,
1: बहुत हाई था।
0: तो सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे, जैसे परिवार से तो फिर जाहिर है याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे?
1: ऐसा है, हमारे को ना हफ्ते में एक बार फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया सैटेलाइट फोन है,
0: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता,
1: स्पेशल थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बात कर सकते। हमारी फैमिली तो सारी बाप बाप वाइफ बच्चे सारे टीवी से जुड़े होते थे, कुछ खबर आ जाए, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो थोड़ा फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बारी बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे, बाबा आवाज फैमिली सुन लेते, को अच्छा लगता। इधर से चिट्ठियां इतनी आनी शुरू हो गई, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, पूरा देश ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता है ये टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई, तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए।
0: अच्छा।
1: अच्छी अच्छी चीज है, पर उन्होंने क्या हुआ, सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का, वहां पर चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर उनको रोकना पड़ा।
0: अच्छा, तो सर ये फिर मोमेंट, मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है, लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए।
1: बहुत मोटिवेशन मतलब हर छुट्टी तो सबकी कैंसिल,
0: छुट्टी तो कैंसिल सब।
1: मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है। एक हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे पास, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, की कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है, छुट्टी जा रहा, कहते सब मजाक कर रहे हैं तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में, कहते बहुत जरूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई, कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया, चार पांच गया था 15 दिन के लिए।
0: अच्छा।
1: चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर, तो हमने पूछा तुम वापस कैसे आ गया, कहता साहब मैं गांव पहुंचा, बहुत जूते पड़े मेरे को मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे, कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा है देश और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे, तो वो अपना देश के लिए लड़।
0: क्या बात है सर, क्या बात है।
1: और मेरे साथ हुआ शाहिद जी, मेरे साथ हुआ ऐसा, मिसेस चोना मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी आर के पुरम की
0: जी,
1: उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी। मिसेस चोला ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
0: सर ये है मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
1: पूरा देश आपके साथ,
0: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ,
1: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ।
0: बिल्कुल। सर आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है। मुझे था ये जहन में क्या है, मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: 101.6 एफएम नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं? जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी
1: हैं। बिल्कुल है, मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूं जब मेरे को ये बताना चाहता हूं कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर पे। बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी। तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड भी मिले। एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला। एक मेजर दैया, उस टाइम मेजर दैया, बाद में कर्नल दैया, उनको और एक सी विजन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले। मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला। एक कैप्टन अतुल है, उनको GOCNC कमेंडेशन कार्ड मिला। हमारी खुद यूनिट को नदर कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला। तो हमारी काफी यूनिट ने काफी अचीवमेंट की,
0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 सालों से ज्यादा, तो उसके बारे में थोड़ा सा
1: मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफी अच्छे काम किया। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया। DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद। प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद द पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफी काम किया। 5 साल का बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन अपनी, क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी, आर्मी छोड़ने की। अच्छा। दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे, तो मेरे इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया। मैं जॉब शुरू किया।
0: आपने फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीजों में भी, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में? बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना था।
1: शायद मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जो मेरी जॉब खत्म करने के बाद मैं अपने, तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे। मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए, तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की। फिर कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे। पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग, किसी को तो आगे आना था, तो हमारे RW के सारे मेंबर सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, हम गेट्स को मैनेज करना किसी, और कोविड ऐसी चीज थी आदमी हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी। तो हम लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी हमारी कॉलोनी में। हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैप लगाया, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया। लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को, ओल्ड कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज की भी जरूरत होती, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे। तो बहुत सेवा की। तो उससे क्या, मैं एक के बाद मैं 3 टाइम में RW में लगातार आता जा रहा हूं, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊं। तो
0: सर, उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
1: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूं तो मैं जुड़ा हूं, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊं।
0: लेकिन सर, आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो। तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी, किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे तब, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स,
1: मेरे बाबा, बहन भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे तीन बच्चे लड़के हैं, मतलब तीन बच्चे हैं, अंकित, शिवेन और मेरी बेटी साहिबा है, मेरी डॉटर रिलोदृषिका है, हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है उन लोगों।
0: बिल्कुल सर,
1: क्वाइट अ ब्लेस्ड मैन।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो यहां पर सर मैं, अभी तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते

0: जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर करूं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
1: He can join every branch. If as an engineer, he can join as a technical. When okay. he comes as a, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that.
0: Okay.
1: And as an engineer, he can join that technical branch.
0: Right, sir. और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से और ये आपको नमस्कार करें। नमस्कार
1: sir. नमस्कार जी।
0: और ये है कर्नल रिंदा इज वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल सल्यूट टू हिम रिगार्ड्स विनोद तायल है सर ये डीएलएफ गुड़गांव से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर एफएम। आई एम ऑनलाइन। थैंक्स।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: कर्नल नंदा वाह वाह कर्नल नंदा ग्रेट ऑफ यू।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: मल्टीपल मैसेजेस ने किए सर आपकी तारीफ में।
1: तारीफ क्या था, आपस का प्यार है सबका ही।
0: बिल्कुल सर। ये सर है डॉक्टर दीपक जोशी। सर ये अच्छा ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। और ये है सर नमस्कार जय हिंद यशवंत आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
1: हाँ सर श्रद्धा जी।
0: और सर ये है हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट और देश हित ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है। बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूं मैं कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद।
1: तो सरावद साहब थैंक यू
0: जी। ये आपको सैल्यूट करते हैं और कहते हैं सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत मां की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत रंजीत मस्ताना रायबरेली।
1: थैंक यू।
0: तो सर ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ पर चलते चलते
1: थैंक यू वेरी
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर।
1: गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक।
0: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू।

0: सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के पांच बजे हैं, प्रस्तुत है युवाओं का संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों, कुछ रास्ते जमीन पर चलते हैं और कुछ रास्ते पानी पर, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की चाह दोनों में एक जैसी ही होती है। समुद्र की लहरों पर चलते जहाज सिर्फ लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते, बल्कि दुनिया के देशों और उनके बीच के रिश्तों को भी जोड़ते हैं। और ठीक वैसे ही हमारी मातृभाषा हमें हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से जुड़ती है, जैसे हम और आप जुड़े हैं आज के युववाणी कार्यक्रम से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, समुद्र को देखिए तो लगता है जैसे धरती ने अपनी कोई पुरानी कहानी पानी पर लिखती हो। लहर आती है, किनारे तक कुछ कहती है और फिर लौट जाती है। लेकिन समुद्र की ये लहरें सिर्फ कहानियां नहीं लाती, अपने साथ दुनिया की जरूरतें, व्यापार और विकास की एक लंबी यात्रा भी लेकर चलती है। और इसीलिए हर वर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष यह 24 सितंबर को मनाया जा रहा है, यानी आज गुरुवार के दिन, जिसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के महत्व, जहाज रानी की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण की रक्षा और समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से

दुनिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत के लिए भी समुद्र का महत्व बहुत व्यापक है और देश के अनेक बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन समुद्र मात्र व्यापार तक सीमित नहीं है। मछली पालन, समुद्री पर्यटन, तटीय क्षेत्रों में रोजगार, ऊर्जा और अनेक वैज्ञानिक गतिविधियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, जिस समुद्र से हमें इतना कुछ मिलता है उसकी चिंता करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। लगातार समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा, तेल और अन्य प्रदूषक समुद्री जीवों और पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। समुद्र की लहरें शायद हमारी भाषा में शिकायत नहीं करती, लेकिन उनके भीतर पल रहे जीवों पर पड़ने वाला असर हमें जरूर सोचने को मजबूर कर सकता है। यही कारण है कि समुद्र की सुरक्षा केवल समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की भूमिका। प्लास्टिक का अनावश्यक इस्तेमाल करना, कचरा खुले में ना फेंकना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना, ये छोटे छोटे प्रयास भी समुद्री पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। समुद्र क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हमारी विशेष सराहना के पात्र हैं। जहाजों पर काम करने वाले नाविक और अन्य कर्मचारी लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली इस व्यवस्था को चलाते हैं। उनके लिए समुद्र केवल पानी नहीं बल्कि उनका कार्यस्थल और जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के युवा के लिए समुद्र संभावनाओं की एक पूरी दुनिया भी है। समुद्री विज्ञान, इंजीनियरिंग, जहाजरानी, लॉजिस्टिक्स, मत्स्य विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर मौजूद हैं। और वैसे भी समुद्र हमें एक और खूबसूरत बात सिखाता है। लहरें कभी एक जैसी नहीं होती, उनका सफर लगातार चलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी ऊंची लहर, कभी शांत पानी, लेकिन आगे बढ़ते रहने की कोशिश ही यात्रा को अर्थ देती है। विश्व समुद्र दिवस हमें समुद्र के महत्व को समझने के साथ ही साथ ये भी याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना भी जरूरी है। समुद्र को केवल संसाधन की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत संसार की तरह देखना चाहिए, क्योंकि समुद्र बचा रहेगा तो केवल उसकी लहरें नहीं बचेंगी बल्कि उसके साथ अनगिनत जीव, तटीय जीवन, रोजगार, व्यापार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बचा रहेगा।

0: नमस्कार। यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष

0: अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क 118 रुपए निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान। गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
5: जी,
4: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
5: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
4: पर ये होगा कैसे?
5: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
4: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
5: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
4: बस
5: बस
4: समझ गया।
5: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से उतरती हैं। माँ जब पहली बार बच्चे को पुकारती है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसमें अपनापन होता है। घर की भाषा, घर की बातचीत, दादी की कहानी, गांव की बोली, त्योहारों के गीत और बचपन की पहली यादें, इन सब के बीच एक भाषा चुपचाप हमारे भीतर अपना घर बना लेती है। यही भाषा आगे चलकर हमारी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, यह हमारी स्मृतियों की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा है और हमारे अनुभवों को समझने का पहला रास्ता भी है। और दोस्तों, आज का युवा एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां सीमाएं बहुत तेजी से छोटी हो रही हैं। इंटरनेट ने दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। अंग्रेजी सहित कई भाषाओं का ज्ञान शिक्षा, रोजगार और दुनिया से संवाद के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी भाषाओं को सीखना और अपनी मातृभाषा को भूल जाना, ये दोनों अलग अलग बात है। एक युवा जितनी भाषाएं सीखे उतना अच्छा है, लेकिन अपनी भाषा के लिए उसके मन में सम्मान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अपनी भाषा के साथ जुड़े रहना किसी दूसरी भाषा के लिए दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि यह अपनी जड़ों को मजबूत करके दुनिया की ओर आगे बढ़ना है। हमारी मातृभाषा में सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें लोकगीत होते हैं, कहावतें होती हैं, लोक कथाएं होती हैं और रिश्तों को पुकारने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक शब्द कई बार पूरी पीढ़ी की कहानी अपने भीतर छिपाए होता है। जरा सोचिए, दादी नानी की सुनाई हुई वो कहानी जब याद करते हैं, हमें केवल उसका कथानक याद नहीं आता, उस कहानी को सुनाने वाली आवाज भी याद आती है। वो आवाज जिस भाषा में थी, वही भाषा उस स्मृति को और भी गहरा बना देती है। यही कारण है कि मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का पुल बनती है। लेकिन आज एक

चुनौती भी है। डिजिटल दुनिया में युवा जिस तरह की सामग्री देखता और सुनता है उसमें कई बार अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के लिए जगह कम दिखाई देती है। अगर हम अपनी भाषाओं में अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे नहीं, अपनी बोली में गीत और कहानियां रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बहुत सी मौखिक परंपराएं कमजोर पड़ सकती हैं। इसलिए आज का युवा अपनी मातृभाषा को केवल घर की बातचीत तक सीमित न रखकर डिजिटल दुनिया तक ले जाए। वो अपनी भाषा में ब्लॉग लिखे, पॉडकास्ट बना सकता है, कविता सुना सकता है, लोक कथाओं को रिकॉर्ड कर सकता है और मनोरंजन के लिए भी जो वो वीडियो बनाता है उसे भी अपनी मातृभाषा में बना सकता है। अपनी भाषा की खूबसूरती को दुनिया के सामने रख सकता है। और वैसे भी दोस्तों, किसी भाषा की समृद्धि केवल इस बात से नहीं होती कि उसे कितने लोग बोलते हैं, उसकी समृद्धि इस बात से होती है कि उस भाषा में कितने विचार जन्म लेते हैं, कितनी कहानियां लिखी जाती हैं, कितनी कविताएं कही जाती हैं और नई पीढ़ी उसमें अपने सपने कितने सहजता से देख पाती है। युवा अगर अपनी मातृभाषा में सोचने, लिखने और अभिव्यक्त होने में सहज महसूस करता है तो वह अपनी बात समाज तक अधिक आत्मीयता से पहुंचा सकता है। और जब भाषा में आत्मविश्वास होता है तो व्यक्ति में भी अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई देता है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि भाषाओं को लेकर श्रेष्ठता या हीनता का भाव उचित नहीं है। हिंदी हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, मराठी, तमिल, मलयालम या देश की कोई भी अन्य भाषा, हर भाषा अपने भीतर एक संसार लेकर चलती है। युवा जितनी भाषाओं से जुड़ेगा उसका संसार भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन अपनी मातृभाषा वो खिड़की है जिससे वह सबसे पहले दुनिया को देखना सीखता है।

युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। युवा मात्र उम्र का नाम नहीं है, युवा दरअसल वह ऊर्जा है जो किसी भी समाज की दिशा बदल सकती है, और इसीलिए 24 सितंबर को हम राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस डे के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और सेवा कार्यों से जुड़ने का अवसर देती है। सेवा हमेशा बहुत बड़े बड़े काम करने का नाम नहीं है। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण की रक्षा करना या किसी व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचाना भी सेवा का ही हिस्सा है। आज के युवा के पास ऊर्जा भी है और तकनीक भी। अगर इन दोनों का इस्तेमाल समाज के लिए किया जाए तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि रोशनी कितनी है ये हमेशा जरूरी नहीं होता, रोशनी जरूरी ये है कि अंधेरे को मिटाने के लिए हमने प्रयास क्या किया। राष्ट्रीय सेवा योजना का संदेश भी कुछ ऐसा ही है, अपने हिस्से की

जिम्मेदारी उठाइए और जहां हैं वहीं से समाज के लिए कुछ अच्छा करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि देश का भविष्य केवल बड़ी योजनाओं से नहीं बनता, वह उन छोटे छोटे हाथों से भी बनता है जो बिना किसी शोर के किसी के काम आ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपनी पहचान की ओर लौटने वाला रास्ता हमेशा अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से होकर जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी युवा पीढ़ी नई दुनिया को समझे, नई ऊंचाइयों को छुए और अपनी मिट्टी की खुशबू को अपने साथ लेकर चले। तो कार्यक्रम से जाते जाते आप भी ये सोच अपने मन में लेके जाइए कि हमारी सोच समुद्र की तरह विशाल होगी और अपनी मातृभाषा की तरह हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति, सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा से।

0: 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 और 5 सेकंड हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति आशीष वर्मा की है और प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: हेलो, दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला, जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी?
1: थैंक यू सो मच आशीष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: बस एकदम बढ़िया, मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलते रहिए।
1: यही तो प्रकृति वैसे बताऊँ आपको, समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं ना उनको भी स्वीकार करते हैं सभी लोग। जो मौसम भी होता है ना बदलता रहता है, तो इसमें भी मतलब प्रकृति का भी ऐसे होता है कि एक दिशा संतुलन नहीं रहता सभी
0: बिल्कुल
1: का।
0: और इसलिए हम कहते ना कि जैसा मौसम वैसे हम, ये लेकिन प्रकृति के मौसम की बात कर रहे हैं, व्यवहार के प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं कि मौसम की तरफ बदल तो नहीं जाओगे, वो गाना था ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी बिल्कुल।
1: उसके लिए तो मतलब मैं यही कहूंगा आशीष जी की सभी से अच्छे रहे, एक दूसरे से प्रेम से रहे और भाईचारे का मतलब संदेश सभी को देते रहे। और छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें क्या किसी से सिखवा करना, क्या किसी से मतलब घमंड करना।
0: बिल्कुल।
1: और किसी से रूठ भी जाए ना तो आसानी से मतलब जल्दी से मना लेना चाहिए।
0: बिल्कुल। और आज विश्व समुद्र दिवस भी मना रहे हैं, जहां हम एक तरफ समुद्र को व्यापार के लिए देखते हैं, वहीं हम समुद्र को कई चीजों में उदाहरण के तौर पे भी पेश करते हैं। जैसे यार आपका दिल तो बड़ा समुद्र की तरह है, विशाल है, दिल बिल्कुल सागर जैसा है। तो सही बात है, सागर की तरह बहते रहिए, अपने मौज में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए, यही सबसे बड़ी सार्थकता है जीवन की।
1: सही कहा आपने।
0: बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: ये कोयला फिल्म का सुनवा दीजिएगा, देखा तुझे तो हो गई दीवानी।
0: चलिए ठीक है सर, आपकी पसंद पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी उभरा से।

0: सर जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
1: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
0: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और हम तो आकाशवाणी के पुराने दीवान हैं, मतलब समझ लो

0: हमारी सांसों में रेडियो की सांसें हैं, सांस लेते हैं तो समझ लो ऑक्सीजन हमें रेडियो से ही मिलता है, आपके गानों से और प्रोग्रामों से मिलता है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही दीवानगी तो हमें चाहिए होती है अपने इन कार्यक्रमों के लिए, हमारी मेहनत सफल होती
0: है। मैंने वीडियो में देखा है कि आप जानकारी जो भी लाते हैं वो सच्ची रहती है, क्योंकि मैंने आजकल सोशल मीडिया पर जो ऐप के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियो आते हैं, उद्घोषक महोदय के आजकल रील्स आती है जिसमें वो कैसे उस पत्र को पढ़ते हैं, कैसे उस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए उनकी मेहनत होती है, वो हम सब देखते हैं तो समझते हैं सर हम अच्छे ही प्रोग्राम रहते हैं, अच्छी बातचीत रहती
1: बहुत
0: है,
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो इंसान खींचा चला आता है उस आकाशवाणी की ओर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे श्रोता हैं तभी हम हैं। बताइए आज क्या पसंद है, क्या सुनवा दें आपको?
0: ये सर फिल्मों का नाम है, अभी गणेश जी का मतलब उत्सव चल रहा है, गणेश जी के जगह हर जगह पूजा पंडाल बने हुए हैं
1: जी,
0: तो सर गणेश जी का ही मेरा गीत है, फिल्म का नाम है ये मरते दम तक,
1: देवा हो देवा। चलिए ठीक है, आपकी पसंद पर ये गणेश वंदना हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, जिसे आपने सुनना चाहा है बस सुनते रहिए। और गणेश भगवान से हम सभी मिलकर के प्रार्थना भी करते हैं, हम सबके जीवन में मंगल हो, सुख शांति हो, लाभ हो, शुभ हो।

0: गुरुद्वारा गली चौपन रोड से मंगल प्रसाद चौरसिया बोल रहे हैं सर।
1: जी मंगल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं?
0: मेरा हाल चाल तो फिलहाल मंगल चल रहा है सर।
1: अच्छा है,
0: मंगल
1: है। बिल्कुल सर, और आज देखिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो दिन भी मंगल है, गणेश उत्सव पर्व चल रहा है वो भी मंगल करता है।
0: चार पांच दिन मेरे मोहल्ले में पंडाल था, गणेश उत्सव बैठा था ना।
1: इस बार आपने गणेश भगवान से क्या प्रार्थना की?
0: दुनिया को सबसे बढ़िया बुद्धि दें और का सब लोग खुश रह लिया, हमारा यही कोशिश रहती है सर। मतलब हमारा काम या जो भी कुछ हम करते हैं, नहीं कुछ कर पा रहे तो मेरा देख करके ही कर लो भाई, इससे अच्छा खुशी की बात क्या है सर। बस यही मेरी खुशी है। और हमको भाई सीधा फंडा जानते हैं, हम भाई पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, जाए नहीं कुछ कर पा रहे भाई, आप शिक्षित आदमी हो, आप नहीं कुछ कर पा रहे तो कुछ तो करिए।
1: जी जाहिर सी बात है, कुछ तो करिए, जिंदा है तो कुछ तो करिए, इस धरती पे है तो। चलिए अच्छी बात है, देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, पढ़ाई लिखाई की है या आप बिना पढ़ाई लिखाई के किसी रोजगार में हैं, काम में हैं, लगन होना, मेहनत, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बताइए सर आज क्या पसंद है, क्या सुनवा दें आपको?
0: हमारा इच्छा है सर, एक भोजपुरी पिक्चर है गंगा किनारे मोरा गाँव, उसमें का एक गाना है हमको घर पहुँचा दे।
1: गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दे देवी मैया। जी चलिए ठीक है, आपकी पसंद पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी ओपरा से।

0: भैया नमस्कार
1: जी। नमस्ते, परिचय दें अपना।
0: योगेश जांगड़े बेलेतरा छत्तीसगढ़
1: जी। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं अभी?
0: अभी सब, अभी तो खेत से आया हूँ भैया, व्यस्त है।
1: अरे जितनी खेती बाड़ी का जो प्रोसेस था, लगभग आप अपने फिनिशिंग पर हैं?
0: नहीं, अभी 15-20 दिन और बहुत मशक्कत लगेगी भैया। क्या है, बारिश कम होने के कारण इस बार थोड़ा सा 15-20 दिन लेट हो गए।
1: तो कितने बजे निकले थे सुबह खेत के लिए?
0: 7 बजे।
1: 7 से लेकर के लगभग 11 समय, हाँ 11 बजे तक मशक्कत हुई है।
0: बहुत गर्मी हो गई है, धूप है अभी।
1: कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब?
0: देखिए भैया, खेती बाड़ी काम में तो धूप, पानी, बादल, सारी चीजों का सामना करना पड़ता है।
1: वही तो, इसीलिए तो कहते हैं कि भैया जो अन्नदाता हैं, जो अन्न उगाते हैं और जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, तभी तो उनके लिए हम कहते हैं कि जय जवान और जय किसान।
0: जय किसान।
1: वाकई ये मेहनत ऐसी है जिससे हम सब फल फूल रहे हैं, सुखी हैं, और ये पर्वों का माहौल है, अपने आसपास की खुशहाली है, इन्हीं वजह से जो है जीवित रह पाती है। बताइए आज क्या?

0: पसंद है, क्या सुनवा दे आपको?
1: फिल्म प्रेम गीत में एक प्यारा सा गजल है, होठों से छूकर तुम मेरा बीच अमर कर दो,
0: जगजीत सिंह की आवाज में।
1: हाँ
0: चलिए ठीक है सर, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी होपरा से।

0: तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ये था आपसे बातचीत का आज का सफर, जिसे आपके लिए पेश किया आशीष वर्मा ने। गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति आशीष वर्मा की थी और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:59 और 27 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडनगर से वाराणसी ले जत्रा कर रहल सेवा यात्रियन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कैले। इस दौरान प्रधानमंत्री कहले कि जिंदगी का मुख्य उद्देश्य सेवा हर मनई में स्वाभाविक रूप से होके के चाहें। वहां के कहने की राजनीतियों में सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहे के चाहें।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत के निर्माण में नौजवानन के खास भूमिका के बढ़ोले का आह्वान कैले।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर रहा हमें। इजतरा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र आलगता रहे प्रतिबद्धता से प्रेरित हवे। सेवा और सुशासन के नजरिया से प्रेरित सरकार 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य पौले की दिशा में लगातार कार्य कर रहा हो। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिया से ई समर्पण लोगिन के जिंदगी में बदलाव ले आ रहा हो। आज हमने के अपने खास श्रृंखला में लोगिन बदे घर खरीद के आसान और भरोसामंद बनावे वाले रेरा कानून को जानकारी दे रहा है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना अनिवार्य।

0: गौतमबुद्ध नगर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतवार के सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपन विचार साझा करी हैं। कार्यक्रम को 138वीं कड़ी हुई। एकर प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सजो नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कैल जाये। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के लगे बीतल रात एगो स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों का मौत हो गई। ये यात्री बस नोएडा से आगरा जात रहे आ इसमें करीब 35 यात्री सवार रहना है। नोएडा का मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार बतौने की करीब 2 दर्जन यात्रियों के सकुशल बहरे निकाल गये।
2: आग बुझाने के दौरान जो है रेस्क्यू भी प्रारंभ किया गया है। इसमें करीब 20 से 25 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। इसमें कुल जो है 9 लोगों की जो है आग बुझाने के बाद जब हम लोग अंदर प्रवेश किए हैं तो 9 लोगों की दम घुटने अथवा अग्नि दुर्घटना से इसमें दुखद मृत्यु हो गई है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस दुर्घटना में भयल जान माल की हानि पर गहरा दुख जतौले। हमें प्रधानमंत्री हर मृतक के परिजन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपया आ घाही लोगों के 50-50 हजार रुपया को अनुग्रह राशि देहले का घोषणा कैले। वहीं प्रदेश सरकारों मृतकन के परिवार वालन के 2-2 लाख रुपया के अनुग्रह राशि का घोषणा कैले हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: एक सौ दो दशमलव सात FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्रोताओं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सोनवानी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो दिनांक 29 जुलाई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, लंबा चेहरा, एक हरा मजबूत जिस्म है, लंबे काले बाल हैं, पहनावा हरे रंग का सूट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शहनाज परवीन पुत्री शमीम अहमद निवासी ग्राम देवांटन थाना कोन जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो दिनांक 15 जुलाई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा, कद काठी औसतन है, पहनावा आसमानी रंग का सूट व लाल रंग का सलवार, पैर में हवाई चप्पल है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए जान लेते हैं हमारे आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे विदुषी गिरजा देवी का ठुमरी गायन और उस्ताद राशिद खान का तराना, राग होगा झिंझोटी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा, ये आप सुनेंगे रात 10 बजे से। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात 9:45 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, कुछ पुराने फिल्मी नगमे हम लेकर के आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के तहत रात 9:15 पर। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी ये आप

सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से शाम 6:50 पर। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। तो ये थी जानकारी हमारे आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है।

0: पंचन के राम राम। जीरा भैया
1: आपके भी राम राम।
0: जीरा बहन तुके भी राम राम। बहुर का हाल चाल बा?
1: देखा हाल चाल तो सब ठीक है बा, लेकिन जोन आज माने मौसम में देखे के मिला था कि लगातार रुक रुक के जोन बारिश होता वो में जैसे आवे जाए में थोड़ा दिक्कत परेशानी भर। लेकिन अगर बात करल जाए हम लोग की भाई पंच भैया लोगन का देखा कार्यक्रम होला और हम लोगन के समय से अपने पंचायती में बैठना है और सब लोगन का देखा हाल चाल भी जाने के हो कि हमारे पंच भैया और बहन लोगन कैसा नहीं, तो हम तो पहले यही कहला कि हम तो यही उम्मीद करब कि सब लोग देखा कुशल मंगल से हुई। काहे से कि कुशल मंगल से आदमी तभी रह सकला जब देखा उनका स्वास्थ्य अच्छा रही।
0: देखा स्वास्थ्य तो ठीक है, सबसे बड़ चीज कह चाहत है कि देखा कल ही जो पंचायती लगा रहा तो कल ही पंचायती में देखलो ना भैया देखा चिनिया बादाम लेके आ रहना है मुनई बैठ के देखाई पंचायती में फोरत रहना है तो जमन है कितना फैल गयल रहल है। आज देखा पंचायती के पहले देखा रहा अपने हीना बहिन जोन है पहुंच गई नहीं और पहुंच के कुल झाड़ू ओड़ू मार के साफ सफाई करके ओके एक जगह इकट्ठा कर देनी।
1: बिल्कुल
0: एक बात चेतावनी कि भैया जब ये भीज जाए पानी में ना तो भैया ये महकी
1: बिल्कुल
0: पर भैया मक्खी बैठी हाँ
1: बिल्कुल
0: तो भैया ये साफ हो कह दिली कि काल पंचायती में जे भी आवे वो भैया नीमन रहे ठीक ठाक रहे और देखे में भी साफ सुथरा रहे जगह। तो जब साफ सुथरा जगह कौनो रहे ले तो समझ ला कि मन हो जाला एकदम प्रसन्न
1: प्रसन्न।
0: जब मन प्रसन्न हो जाला तो अपने पंचायती में भी मन लगा ला
1: बिल्कुल बातचीत सुने में जानकारी सुने में सब चीज में मन लगा ला।
0: तो जीरा बहन देखा ये कुल बात बा तो देखा एक बात हम कहल चाहते हो कि देखा साफ सफाई बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल
0: चाहे अपने शरीर के सफाई के जरूरत हो
1: हाँ।
0: चाहे कपड़ा लत्ता जो पहनत हो कर साफ सफाई
1: हाँ।
0: जरूरत हो
1: चाहे,
0: चाहे घर के सफाई हो
1: हाँ।
0: चाहे घर के अगल बगल
1: भी हो सफाई गली मोहल्ला के हो जाए सफाई और यहाँ तक कि माने पूरे समाज में भी देखा सफाई के लिए ही जागरूक करे बदे ये समय जो माने 17 सितंबर से आपका जो माने 2 अक्टूबर तक जो स्वच्छता अभियान चलत वाला इसमें देखा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए थे और लोगों के देखा जागरूक भी कर दे रोज जो है कि तरह तरह से स्वच्छता के बारे में देखा समझावल जाता था। अब आज देखा कल गल ना कि स्वच्छता ही आपका जो है कि सेवा है और गंदगी देखा जान लेवा हो जैसे आप कहलन ना कि माने मुनई भैया मूंगफली के फैला के गेलन वो भीज गई तो माने वहां की गंदगी हुई तो मच्छर मक्खी बैठे तो निश्चित रूप से ही है कि अगर सड़न गलन होता तो ओकरे खातिर देखा हम लोगन की यही करे के पड़ी कि गीला कूड़ा के जो है कि हम लोग अलग करल जा सूखा कूड़ा के अलग करल जा जैसे बीमारी ना हो नहीं अगर उस सड़ी तो उसे तार हैजा बा आपका देखा टाइफाइड बा माने तरह तमाम तरह का मलेरिया होगल डेंगू होगल जो मच्छर से इस समय होता नो वो सबसे अगर हमन के बचेगे बा
0: देखा तो, बिल्कुल बात सही कहलू है। एक बात जाना कि भैया देखा जब हर लोग चेतिया आत्मज्ञान अपने अंदर ली आई है कि भैया हमके साफ सुथरा रहे कि हर टोला मोहल्ला पड़ोसी अगल बगल कुल साफ सफाई करब तब एकर जोन है मतलब सफलता कहे नहीं तो भैया जैसे अपन मवेशी ही है तो भैया गोबर ओबर करे ना वहां भी जगह के साफ सफाई कायदे से कह दा निर्धारित स्थान पर गोबर के रखा ताकि भैया आम काम गुठली का दाम हो सफाई भी भयल और उपजाऊ खाद भी भयल नाली का पानी जवन घरे के पानी बहरे जात बा तो भैया देखा आजकल मच्छर भी पन पैल
1: बिल्कुल
0: तो भैया दुई बुन में जरल मोबिल डाल देवल करा ताकि भैया उसे जवन लारवा के बने के स्थिति नर रह और अगल बगल घास के सफाई कर दा भैया वो मच्छर रही तो तुहू के काटी वो अपने मवेशिन के भी काटी तो वातावरण भी उसे शुद्ध रही जब साफ सफाई रही तो वातावरण भी शुद्ध रहे तो जब वातावरण शुद्ध रही तो हम शुद्ध हवा ऑक्सीजन जो लेते वो ले
1: बिल्कुल
0: कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते बाटे, तो के
1: हाँ
0: पेड़ पौधा जवन है भैया सोखत हुआ। तो कहले का मतलब ये बा कि देखा जैसे फसल चक्र अपनावे के बाद वैज्ञानिक भैया सुझावला, वही तरह स्वच्छता भी एक चक्र है।
1: बिल्कुल
0: एक जमाने में देखा पहले का रहा कि अपने अंचल में जहां देखा था पहले बड़ा ज्यादा गिद्ध देखा है। गिद्ध भी जो है पर्यावरण का मित्र रहा, जवन गोरु चौवा मर जाए ओके जवन है साफ सफाई के रूप में उपयोग करे, मतलब और हड्डी जवन है गल सड़ के जमीन के अंदर चल जाए तो मिट्टी में फास्फोरस का मात्रा बढ़े। आज देखा पर्यावरण इतना प्रदूषित तो भयल कि जवन है गिद्ध कस समाप्ति हो गई बा।
1: समाप्ति हो गई।
0: गौरैया देखा विलुप्त तो हो तनी हा, गौरैया अब धीरे धीरे दिखाए लगनी। तो कहले का मतलब ये बा कि हमके पर्यावरण के सुधारे के बाद तो भैया फसल चक्र अपनावे के है।
1: बिल्कुल
0: दूसर बात रासायनिक खादन से दूरी बनावे के है। अब कहबू कि रासायनिक खाद का क्या मतलब, ये भैया रासायनिक खाद का काहे मतलब, रासायनिक खाद अगर हम अपने फसल में डालत है तो कहीं न कहीं ऊ जवन है भैया ओकर तत्व तो अपने भूसा में अपने अनाज में तो जाते बा मट्टी के माध्यम से, जेके कि अपन चिड़ई चुनमुन नहीं सह पावत है। तो कुल मिलाए के एक बात बताई कि हमके साफ सफाई और देसी की तरफ बढ़ाई के है,
1: बिल्कुल
0: शुद्ध वातावरण के रखाई के है और पर्यावरण के जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा और मजबूत बनाए
1: मजबूत बनाए।
0: सके।
1: तो हम तो यही कहला कि आप देखा आपका बात बिल्कुल सही वाला, और बाकी देखा बातचीत हम लोगों की तो आगे हुई, लेकिन आज जो जानकारी हमन के अपने कार्यक्रम में शामिल कर ली ओकरे बारे में भी देखा चर्चा होए की चाहिए, कि हम लोग वो जानकारी के बिना देर के लिए अगर सुनल चाहे तो अच्छा रही। तो जग भैया आज आपके बता दें कि हमरे यहाँ देखा जो जानकारी आयल बा वो देखा किशोरावस्था में परिवर्तन चुनौतियां एवं समाधान, एकरे बारे में डॉक्टर अमर सिंह जो प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बहेरा डोल दुद्धी से हन, इनसे अपन जगत नारायण भैया बातचीत कैले हैं।
0: बातचीत कैले हुआ तो हम तो कहते थे ना कि बड़ा अच्छा बातचीत है, का
1: हाँ,
0: कुछ बतियोले भैया, हमन चुप्पे होवल जाए सुनल जाए फिर कार्यक्रम के आगे
1: चला
0: बढ़ो।
1: सुनल जाए।
2: अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। यदि हम लोग किशोरावस्था की बात की जाए तो निश्चित रूप से एक झंझावत काल की अवस्थाएं हैं, और इसमें जो जिस दिशा की ओर मुड़ जाता है किशोर किशोरियां, वो निश्चित रूप से उस तरफ बिल्कुल ही पारंगत होते हैं और उनकी उसकी तरफ रुझान अच्छा होता है। आज किशोरावस्था के बारे में क्या उनमें परिवर्तन होते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के राजकीय हाई स्कूल बहेरा डोल के प्रधानाचार्य श्री अमर सिंह जी का स्टूडियो में आगमन हुई है, आपसे बातचीत होगी। अमर सिंह जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और इसके साथ की जो किशोरावस्था है उनका देख रेख करना, उनको शिक्षित करना, उनको विकास विकसित करने के लिए किन किन चुनौतियों के सामना करना पड़ता है, तो सर्वप्रथम पहले तो किशोरावस्था के बारे में आप प्रकाश डालें।
3: धन्यवाद। राष्ट्र की रीढ़ है किशोरियां और किशोर, शिक्षा और सभ्यता की ये है एक सुंदर भोर, इनकी सफलता और क्षमता का है जगह जगह शोर, किशोर किशोरियों की कीर्ति फैल रही है चहु और फैल रही है
2: चहुं
3: ओर। जन मन भावन वाणी ओबरा आकाशवाणी को मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। आज बड़े हर्ष की बात है कि वर्तमान परिदृश्य में किशोरावस्था एडोलेसेंस अपने आप में एक ज्वलंत विषय है, और किशोर और किशोरियों को उचित मार्गदर्शन, उचित शिक्षा, उचित गाइडेंस अगर समय समय पर प्राप्त होता रहे तो निश्चित रूप से किशोर और किशोरियां एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं।
2: जी जी पर इसमें जो शैशवावस्था होती है उसमें उस समय तो लोग ये कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकन पात, निश्चित रूप से उस समय आंकड़ा लोग लगाता है, आकलन भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है किशोरावस्था, उस समय बालक जो है कि निर्णय लेने में दो तरफ चलने लगता है कि किस मार्ग पर मैं चलूं, कैसे करूं। तो क्या कहना चाहेंगे किशोरावस्था में परिवर्तन के बारे में? सर,
3: यह बात सच है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच सेतु का काम करती है यह अवस्था किशोरावस्था। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था के अंतर्गत चिन्हित किया है
2: जी,
3: और हिंदी में जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, किशोर कहते हैं, जहां तक हिंदी में इस शब्द की अगर हम तह में जाएं, जड़ में जाएं, तो ये जो किशोर शब्द है, किशोर शब्द का अर्थ होता है किसी नन्हे शावक से
2: जी।
3: तो चाहे वह शावक मनुष्य का हो या किसी जंतु का हो, और चाइल्डहुड तथा एडल्टहुड के बीच जो यह एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, यह अपने आप में अनेकानेक शारीरिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को संजय हुए होता है
2: जी।
3: चूंकि बाल्यावस्था में जहां एक बच्चा अपने माता पिता से बहुत जुड़ाव लगाव रखता है, बिना माता पिता के वह कहीं न तो जाता है, और धीरे धीरे जैसे ही वह बच्चा किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखता है, वैसे तमाम तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि यह जो उम्र है, अंग्रेजी में उसको स्टॉर्मी एज कहते हैं, तूफानी उम्र इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है
2: जी।
3: कारण यह है कि बच्चा जब बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उस समय वह स्वतंत्र विचार करना शुरू कर देता है, स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर देता है, और फिर वह अपने माता पिता से उतना लगाव नहीं रखता है, वह अपने नए नए दोस्तों का चुनाव करता है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करता है, और किशोरावस्था में थोड़ा सा उतावलापन आ जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में वह अपने आप को समझता है कि मैं अब परिपक्व हो रहा हूं,
2: और
3: जब वह यह समझने लगता है कि वह प्यूबर्टी की ओर बढ़ रहा है, और सचमुच मानसिक विकास भी द्रुत गति से होता है, लेकिन उस समय निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो मानते तो यह है कि मेरे अंदर अब क्षमता आ गई है, अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन उस कठिन दौर में, कठिन मोड़ में किशोरों को, किशोरियों को बहुत ही किसी कुशल मार्गदर्शक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाना अति आवश्यक होता है। क्योंकि यह एडोलेसेंस शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा हुई है, और लैटिन भाषा में इसको एडोलेसियर कहते हैं, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी।
2: तो इसमें किन किन चुनौतियों की सामना करनी पड़ती है?
3: सचमुच
2: जी,
3: बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, जिनमें वाइगोत्स्की, कोहलर और पियाजे जैसे ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, इन्होंने अपने सर्वेक्षणों के माध्यम से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने जो विद्यालयों में अब तक का मेरा जो अनुभव रहा है 27-28 वर्षों का, मैंने किशोर और किशोरियों को देखा है, उनके सामने अनेकानेक चुनौतियां आती हैं। क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे, कई प्रकार के, विविध प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, हालांकि वो एक सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं, लेकिन कुछ किशोर और किशोरी उस समय भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और वे अपनी समस्याओं को अपने स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका को, अपने किसी मेंटोर को, अपने किसी गाइड को, अपने किसी काउंसलर को नहीं बताते हैं। तो उसे क्या होता है कि वे जब अच्छे ढंग से काउंसलिंग कहीं कर पाते हैं, तब फिर उन्हें कुछ अलग ही प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, वंस दे गाइडेड प्रॉपरली दे गोज द राइट वे, एंड इफ मिस गाइडेड दे फॉलोज द रॉन्ग वे।
2: बिल्कुल सर, इसमें निश्चित रूप से जब तूफानी समुद्र में नाव जब चलता है, ऐसे स्थिति में डगमगाना स्वाभाविक है, लेकिन शिक्षक एक अच्छा नाविक होते हैं और समाज के दर्पण भी हैं। तो ऐसे तूफानी अवस्था से निजाकत पाने के लिए क्या कुछ समाधान कर सकते हैं सर?
3: बिल्कुल, इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम देयर इज सोल्यूशन, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। और किशोर और किशोरी जिस चुनौती का सामना करते हैं, उस चुनौती के सामना करने में सबसे सहायक सिद्ध होते हैं किसी विद्यालय में शिक्षक, अगर किशोरियां हैं तो उनके लिए सहायक सिद्ध होती हैं शिक्षिकाएं। और किशोरियों को बेझिझक बिना किसी को लोकलाज के अपनी शिक्षिका को उस उम्र में जो शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, खुल करके एक ओपन टॉक होनी चाहिए, अपनी शिक्षिका को बताएं और फिर वह शिक्षिका कुशल तरीके से एक कॉर्डियल एटमॉस्फियर में किशोरियों की समस्याओं का निराकरण करती हैं। और जो शिक्षक होते हैं वो किशोरों की हर तरह की समस्याओं का निराकरण करते हैं, उनका कुशल मार्गदर्शन करते हैं और इस तरह से किशोर और किशोरियों के मन में जो तमाम तरह के संदेह होते हैं, जो भ्रम होते हैं, उनको दूर किया जाता है और उन्हें शिक्षा के सही रास्ते पर लाया जाता है। चूंकि कहा ही गया है संस्कृत में, ये जो किशोरावस्था है यह शिक्षा प्राप्त करने की सबसे अच्छी अवस्था होती है, इसीलिए इसको बसंत अवस्था कहा जाता है।
2: जी जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा रचनात्मक आप काम भी करते हैं और कभी कभी तो बहुत अच्छा रचनात्मक गुनगुनाहट के साथ भी सुनने को मिलता है। तो और किशोर किशोरियों के बारे में चलते चलाते क्या कुछ कहना चाहेंगे?
3: अवश्य, मुझे जब समय मिलता है तो मैं गीत रचना भी करता हूँ, स्वर रचना भी करता हूँ और हाल ही में मैंने किशोरावस्था पर एक गीत रचा है। मैं चाहूंगा कि चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष गुनगुनाऊं।
2: जी, स्वागत है।
3: धन्यवाद। किशोर

0: का रखना ख्याल, सही ज्ञान से करिए खुद को खुशहाल। किशोरावस्था है कोमल अवस्था।
1: तो श्रोता देखें, कितनी अच्छी जानकारी इसके साथ साथ, बातचीत के साथ साथ, अच्छा गुनगुनाहट के साथ किशोरावस्था पर जो काव्य प्रस्तुत किए डॉक्टर अमर सिंह जी। आप राजकीय हाई स्कूल बहरा डोल के प्रधानाचार्य रहे, इतना अच्छा प्रस्तुति के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: जीरा बहिन,
2: हाँ जग्गू भैया,
1: देखा डॉक्टर अमर सिंह भैया से जगत नारायण भैया अपना बातचीत करत रहे हैं, कैसे कैसे चुनौतियों का समाधान विषय पे।
2: बिल्कुल,
1: तो देखा बहुत अच्छा जानकारी देना भैया, और भैया के देवल जाए धन्यवाद। लेकिन एक बात ये कही कि भैया खेती बाड़ी और गुरुबारी, भैया हम तो गाँव वाला है या गाँव का रहवैया है या भाई माटी ओढ़न माटी बिछावन, भैया माटी माई स्वस्थ रही है तो समझ ला कि अपन मवेशी से लेके मानव तक, पेड़ पौधा से लेके भैया जोन फसल तक,
2: बिल्कुल
1: सब स्वस्थ रही, सब मस्त रही।
2: हाँ,
1: लेकिन अगर माटी माई बेजार हुई है
2: हाँ,
1: तो कहीं न कहीं जोन है इस समस्या मान के साथ भैया सभी कुछ न कुछ परेशानी झेली।
2: बिल्कुल,
1: तो अपने अंचल में देखा मरचा और मरचा का टमाटर का अपन अंचल भी बाय। उमा शंकर भैया जो प्रगतशील किसान भैया हुआ और सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत कैले हुआ कि मिर्च का ज्यादा अच्छा पैदावार लेवे बदे कवन कवन तकनीकी अपनावल जाए।
2: हाँ, हाँ।
1: और मरचा जवन है भैया देखते बात भैया हर जगह उपयोग होला। और एक बात बताई, हरियर मरचा का अगर एक दाना भी तोहरे अतड़ी में बा गर्मी के दिनन में हो तो समझला कि हैजा कालरा से तुहार जान बचल है।
2: अच्छा,
1: कर अपन महत्व भी बा, विटामिन ई भी भरपूर मात्रा मिलेले। तो का कुछ भैया के जानकारी बा अच्छा उपज बदे मुनई भैया बतियात हो तो हमन चुप्पा होल जाए सुनल जाए।
2: चला सुनल जाए।
3: हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में हम लोगन ऐसन खेती कर चाहिला जौने में हम लोगन के अधिक मुनाफा मिले और थोड़ा सा लागत कम हो। देखें अपने अंचल में खास तौर से टमाटर और मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर ए मौसम में होल और एक ऐसने किसान आज रावर्सगंज ब्लॉक के कोसी गांव से हम लोगन के बीच में उमा शंकर पटेल भैया आल हुआ। आपका अपने कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। उमा शंकर भैया ई बतावें कि ये साल कितना मिर्च का खेती आप कैले हुआ?
4: ये साल हम करीब 12 बीघा खेती कैले ही
3: मिर्च का।
4: मिर्च का
3: तो भैया ई खेती लगान पर लेकर कैले हुआ कि नहीं खेत घरे का है?
4: कुछ घरे कैले ला, बकिया लगान का लगान पर लेके कैले।
3: अच्छा, अच्छा भैया देखें मिर्च का खेती आप लोगन बड़े पैमाने पर करना, ये मिर्च का जो नर्सरी बा कब डालना?
4: ये मिर्च का नर्सरी करीब करीब 25 से 30 मई के बीच में हम लोग डाल देवल जाला।
3: अच्छा, ओकरे बाद खेत का तैयारी करना?
4: खेत का तैयारी तो गर्मी में ओके पलाऊ से खूब गहरी जोताई कर देवल जाला।
3: अच्छा,
4: जोताई करके वैसे छोड़ देवल जाला, जब पहला बारिश होला तब तो ओके फिर से जौन बा हर से जोत के रोटावेटर करके तो ओके खेत बढ़िया तैयार कर जाला।
3: अच्छा, रोपाई आप लोगन कब कराना मिर्च का?
4: रोपाई करीब करीब अरे जुलाई में, लगभग जुलाई में कर दो जाला हम रोपाई, पहली जुलाई के।
3: अच्छा, जुलाई में मिर्च को रोपाई आप लोगन कह देना। अच्छा भैया, ये साल मौसम थोड़ा सा माने 15 जून से बारिश होए लगल, मिर्च बदे लोग कहन के कम बारिश चाहल है, तो जौन लगातार बारिश होता ऐसे मिर्च पर का प्रभाव पड़ता?
4: ये पे बहुत प्रभाव पड़ल बाटे कि एक लगातार जो चालू भइल बा
3: 15 जून से
4: तवन आज तक एक महीना लगातार बारिश भइल, उमा किसान भाई जोन बा या हम अपन खेत के बढ़िया से जोताई नहीं कर पौली, और बीच में जब थोड़ा सा खुलल तो पलाऊ के खेत रहल है, ओकरे बाद में ओके ट्रैक्टर से जोताई करल गल, तो गील का चोसे जैसे जोताल पौधा बड़ा होकर लल लगाओ तैयारी बिल्कुल एकदम रहल, तो खेत के बढ़िया से तैयारी नहीं हो पौलस और वही में लग गल मिर्चा।
3: अच्छा,
4: नमी में ज्यादा,
3: तो ज्यादा नमी में मिर्चा भैया लग गल, तो मिर्चा कायदे से चलता कि नहीं रोग से ग्रस्त बा?
4: नहीं, मिर्चा कायदे से नहीं चलत बा, रोग से ग्रसित बा, एकरे वजह से कि मतलब वो कच्चा खेत जोत गल और नीचे नीचे गिलकिटाह मट्टी हो गल, सोड़ कायदे से नहीं जा पौलेस, एक वजह से वो बढ़िया से मर्चा चलल नहीं।
3: अच्छा, ये समय जोन मौसम में उतार चढ़ाव होता, कभी गर्मी आ जाती है कभी ठंडी आ जाती है, तो ऐसने स्थिति में मिर्च में कौन कौन सामयिक कार्य आप लोगन करत हो?
4: इमा घास खर पतवार ज्यादा से ज्यादा आ जाता बारिश से, खर पतवार नाशक दवा से जोन बा छिड़काव होता उम्मा, और चढ़ाव उतार के जो जिससे बाद बाकी बारिश होता और बारिश भइले के बाद में तुरंत मौसम खुला था तेज घाम होता और पौधा एकदम रोग से ग्रसित हो जाता।
3: अच्छा,
4: हाँ, मोटा वाला गुर्चा और पतला वाला गुर्चा दोनों से एकदम ग्रसित हो जाता।
3: अच्छा, ये मोटा और पतला वाला गुर्चा का हो माँ शंकर भैया?
4: ये एक मर्चा में एकदम कोढ़ टाइप का रोग हो जाला जो मोटा गुर्चा हुआ।
3: अच्छा, पत्ती पूरी सिकुड़ जाला
4: एकदम से, वो एकदम एकदम सिकुड़ के एकदम बटूर जाए, मतलब वो कौनो चांस नहीं हो कि जोने से कि वो कौनो दवा से वो सही हो जाए।
3: जो पतला वाला गुर्चा का है?
4: ये पतला वाला जो महीन गुर्चा हो लाल टाइप का होला, तो एक दवा से ये कंट्रोल हो जाला, ये मर्चा साफ हो जाला, ई हो जाला, ई नहीं नुकसान पहुंचाता।
3: अच्छा, तो ये अगर पतला वाला गुर्चा पकड़ाता तो माने अगर सामयिक देखभाल कर जाए, दर दवाई का प्रयोग कर जाए, तो कितना दिन में वो मिर्च की फसल अच्छी हो जाए?
4: जब दवाई पड़ जाए तब बस वो कंट्रोल हो जाए, फिर वो पत्ता धीरे धीरे वो साफ हो लगी होकर, और ऐसे ही दो दफे तीन दफे दवाई डाल दें बिल्कुल फ्रेश हो जाए।
3: अच्छा,
4: मोटा वाला गुर्चा केतनो आप दवाई डाली है तन्नी मन्नी खुली मूली नहीं तो बस फिर वो ऐसा गोलिया जाए।
3: अच्छा,
4: हाँ, वो एकदम समझे वो खत्म है होके।
3: तो वो पौध के फिर का करे के पड़े?
4: वो पौध के लोग लोभ और लालच बस ओके खेते में रख ले रहला, लेकिन ओके रखे के न चाहिए।
3: अच्छा,
4: ओके तुरंत उखाड़ के बहुत दूर ले जाके फेंक दो चाहिए, या तो गड्ढा खन के ओके तरे तुप दो चाहिए, ताकि उमक बैक्टीरिया फिर दूसरे पौधा में न आ पाए।
3: बिल्कुल सही बात आप कहते हो। अच्छा, जैसे कि एक क्षेत्र में आप लोगन के अगल बगल बहुत मिर्च लगल बा,
4: बहुत
3: एक जगह जिसे वो रोग लग जाता तो दूसरे खेत में भी जाए का संभावना बढ़ जाती है?
4: एकदम बहुत तेजी से जहर का हवा चलता है, एकदम पूरा प्लाट का प्लाट एक तरफ से वो पूरे पूरे बेल्ट में एकदम वो थ्रिप्सोमाइट का प्रकोप हो जाता है।
3: अच्छा, तब वैज्ञानिक भैया लोगन से एक उपाय आप लोगन पूछा ना?
4: बहुत पूछल जाला, बहुत जोन बार डिस्कस होला, तन्नी सा नहीं बहुत वैज्ञानिक हम लोगन के बेल्ट में आवल लेन, एक वजह से कि मर्चा के पूरा केंद्र बन चुकल है सोनभद्र, एक वजह से आवल लेन बहुत वो सब बातचीत होला, लेकिन अनेकों प्रकार के दवाई बतावल लेन, अपने से भी खेत में लिया के जोन अपन दवाई घुरवा के ट्रायल के रूप में डलवा लेन, लेकिन कोनो काबू नहीं मिल पावत हो,
3: माने उपाय कोनो नहीं हो पावत। अच्छा, ये समय भैया जोन मिर्च का पौधा वा कहे से कि बरसात के बाद खुलल वा, तो कोनो दर दवाई का प्रयोग आप लोगन करन?
4: बहुत दवाई के प्रयोग करल जाला, जितनी दवाई महंगी से महंगी दवाई है, कम से कम 15 लीटर वाला जोन टंकी आवला 500-600 रुपया प्रति टंकी के दवाई ऊपर छिड़कल जाला, फिर भी थोड़ा थोड़ा काबू मिलता, लेकिन फिर रोग से ग्रसित हो जाता है मौसम के चढ़ाव उतार से।
3: अच्छा,
4: हाँ,
3: उमा शंकर भैया देखें मौसम का उतार चढ़ाव बा, तो जिसे अगर बढ़िया से नाली मिर्च के फसल में बनल बा तो पानी का असर उनमें नहीं न पड़े?
4: नहीं, पानी का असर एकदम बिल्कुल नहीं, ऐसे कि हमने के मिर्चा वाले बेल्ट में कोड़ा चढ़ाव वाली मिट्टी चढ़ाव वाली मशीन एकदम घरे घरे सबके उपलब्ध हुए, और गहरी से 3 दफे 4 दफे 5 दफे तक लोग कोड़ा चढ़ा के नाली बना दे बा गहरी नाली।
3: अच्छा,
4: उसे कोनो दिक्कत नहीं है।
3: अच्छा, कई बार ये मिट्टी चढ़ावे के पड़ा ला भैया?
4: मिट्टी जैसे कि कुछ लोग कम चढ़ाव लेन, कुछ लोग जो बात ज्यादा चढ़ाव लेन, जैसे छोटा पौधा हो तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी दिए, जब बड़ा पौधा हो तो थोड़ा ज्यादा मिट्टी दिए।
3: अच्छा, ये मिट्टी जैसे कम और अधिक आप लोगन देना तो उसे का अंतर देखे में आवला?
4: उसे अंतर ही आवला, अगर स्वस्थ पौधा हो और बढ़िया हो तो हम अच्छे से खाद देके मिट्टी से ढांक दी हन, तो जो बारिश तेज होए वाला बा तो कितनो तेज बारिश हुई वो मर्चा उम्म से सूखी न उठा लगी न कुछ लगी, पानी एकदम सीधा निकल जाये नाली से एकदम बाहर।
3: अच्छा,
4: और जो छोटा पौधा बा तो लगातार जैसे बारिश हो गल 10 दिन 15 दिन तो उम्म जो बाबू सूखे की संभावना ज्यादा रहला।
3: अच्छा,
4: हाँ, एक वजह से वो नाली मोट मोट बना देवल जाला।
3: अच्छा, उमा शंकर भैया ये समय आप लोगों का मिर्च कौने अवस्था में बा?
4: ये समय आधा मिर्च मान के चलें अपने बेल्ट से कि आधा मिर्च बढ़िया बा अपने फसल में, अपने ही खेत में या सबके खेत में, तो आधा रोग से ग्रसित बा, आधा बढ़िया बा वही में।
3: तो जौन बढ़िया फसल बा ओके कैसे बचाए कर रखत हो?
4: अब वही पर अब बहुत ज्यादा लागत लग चुकल हुआ है। एकरे वजह से महंगी महंगी दवाई लोग लिया के समय कोई वही में डालत बा एकदम अंधाधुन
3: कि बचल
4: है। हाँ कि बचल है, जौन बचल बा तौने बचल है। कुछ जौन बा रोगी हवा बा वो ठीक हो जात बा वही में, तो ऐसे जौन बा किसान लगल है वही में।
3: अच्छा, फल फूल की स्थिति में बा मिर्च?
4: एकदम फल फूल के स्थिति में बा, एक बार दो बार अब तीसरा बार लोग सबकर बिनाई होता, अपनो बिनाई भेल खेते का तोड़ाई होता, कुछ बहुत निकलता।
3: अच्छा, जैसे एक बार मिर्च टूटला तो मिर्च टूटले के बाद दवा का प्रयोग करे के पड़ा?
4: हाँ, मिर्च जब खेत खाली हो जाये तो ओमे तुरंत जौन बा कीटनाशक का अच्छा अच्छा थ्रिप्समाइट का महंगी से महंगी दवाई ओमे पड़ला।
3: काहे बदे पड़ला कि फल फूल आवे के रोग जोग से बचा?
4: नहीं, रोग जोग से बचावे खातिर, मतलब थ्रिप्समाइट, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, लाल मकड़ी, जितना ही रोग हो ओके बचावे बदे की दवाई पड़ला महंगी महंगी।
3: अच्छा, जय बार मिर्च टूटी तय बार ही दवा का प्रयोग करे?
4: हाँ, तय बार करे पड़ला। कभो कभो तो ऐसा होला ना कि एक दफे टूटल मर्चा और फिर टूटे के बाद ओकरे बीचों में एक दफे पड़ला।
3: अच्छा,
4: दो दफे पड़ जाला कभो कभो।
3: अच्छा,
4: जब ज्यादा रोग रहला तब। और ओमे कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ टानिक जौन बा डालल जाला, जबकि दवाई पड़ जाये कीटनाशक, ओकरे बाद में दो दिन तीन दिन के अंतराल पर ओमे कुछ टानिक देवल जाला, जौन से फंजीसाइड देवल जाला कि जौन से फूल फर और बतिया लगे और बढ़िया से रहे, चमकीला हो, स्वस्थ रहे और अच्छा प्रोटेक्शन दे,
3: मन पैदावार अच्छी मिले।
4: जी, जब तोड़ाई के एकदम कगार पर रही मर्चा तो उमे दवाई न डाल ली कीटनाशक, ऐसे कि वो खाए के चीज हुए ना, लोगन के बीच में वो जहरीला चीज डाल के
3: ना जाए।
4: हाँ, लगावे तो कुछ लगावे, कुछ बहुत मर्चा लगावे। ओकरे बाद में हमरे गाय में एक मान सिंह भैया हैं, बहुत बढ़िया ड्रैगन के खेती कैले हैं और स्ट्रॉबेरी का और करेला के लोग खेती करें झाड़ी पर थोड़ी सा एक बीघा, और लौकी के करें जौन बा थोड़ा जौन बा बढ़िया परी, नेनुआ करें ऊपर बढ़िया परी, बड़ी अच्छी मार्केट रल है।
3: बिल्कुल,
4: 45 रुपया किलो थोक के भाव लौकी और 40 से 50 रुपया जौन बा नेनुआ के भाव, करेला के भाव तो जनता बा 100 रुपया, 80 रुपया, ये तरफ जाए किसान भाई, हम साथे साथे चलो।
3: बिल्कुल सही कथवा उमा शंकर भैया, अगर आप माने किसान भाई लोग सिर्फ मिर्च पर ही नहीं, टमाटर फिर नहीं, माने प्रत्येक प्रकार का अगर सब्जी लगाई है
4: जी,
3: तो एक अगर नुकसान हुई तो दूसरे में फायदा हो जाये। आज उमा शंकर भैया आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपने अनुभव का बात अपने किसान भाई लोगों से साझा कैलेन बटलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुनई भैया, उमा शंकर भैया के जौन अपन अनुभव रहल है मर्चा के पैदावार लेवे के अच्छा तकनीकी का हो सकेले, और अपने अंचल में देखा मर्चा के खेती सुख भी मानेला,
3: तो
1: भैया के देवल जाए धन्यवाद। लेकिन एक बात हमेशा कहल जाला,
3: हाँ।
1: जब मर्चा के बात भइल ना तो एक आंख खेते पर दूसरा आंख
3: बाजारी में
1: तो आज कहाँ के पाती अपने हाथे आइल बा, ओके पोटरी के खोला तनी फरियाए के बांज दा।
5: देखा भैया, आज देखा मधुपुर से जो न की पुनवासी चौहान भैया भेजले हैं, कुंतल में बाजार भाव हो, लाल आलू आपका 1200 हो, सफेद आलू 1000, टमाटर 4000, बोड़ा 2000, परवल 5000, गोल बैगन 2500 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 1500 रुपया, हरा मिर्चा आपका 4500 रुपया, और धनिया आपका जो ना कि 10000 रुपया कुंतल है, अदरक भी आपका 10000 कुंतल है, लौकी आपका 1500 है, कोहड़ी आपका 1200, नेनुआ आपका 2200, भिंडी 1300, करेला 3000, अब पालक आपका 2500 रुपया है, लहसुन 12000 है, अब प्याज आपका 4500 रुपया बा, सूरन बा आपका 4000, कुंदरू बा 1800, अरुई 3000, और खेक्सा देसी वाला देखा 12000 हो, हाईब्रिड वाला 5000 बा, खीरा 2500 रुपया बा, पपीता आपका 2000 बा, और शिमला मिर्च बा 6000, फूल गोभी आपका देखा सैकड़ा में बा 2500 रुपया सैकड़ा आपका फूल गोभी है, पत्ता गोभी 2000 बा, और नींबू आपके जो ना कि 500 रुपया सैकड़ा बा, ये आज के ताज़ा बाजार भाव है।
1: तो देखा पाती के माध्यम से ताती भैया भेजे न, बहुत बहुत भैया के धन्यवाद।
5: हाँ।
1: अब देखा देर न कैल जाए, मोर मनसायन केकर करावत हो।
5: देखा मन मनसायन आपका जो न कि मुन्ना लाल कोल और संघाती लोगन के स्वच्छता गीत हो पूर्वी, अब चला बिना देर के लिए उके सुनल जाए।
1: सुनल जाए।

0: संघाती भैया और पूर्वी विधा में सुनावत रहना है, लेकिन एक बात कहल चाहत है कि देखा खेती बाड़ी और गोरवाई, लेकिन गोरवारी लेकिन पर्यावरण के साथ और अपने माटी माई के स्वास्थ्य से भैया बिल्कुल पंच भैया लोगों से निहोरा करब कि भैया समझौता मत करा।
1: हाँ।
0: बेहतर से बेहतर बनावा,
1: बिल्कुल
0: एक अच्छा भारत का निर्माण उसे हुई।
1: हाँ।
0: जो युवा हुआ अपने यहाँ स्वस्थ रही मस्त रही घड़ी के सुई सारा करत अपने कार्यक्रम के समेटल चला चला के
1: तो सब पंचन के राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय हिंद। हिमांशु भैया।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में मेहनत तो करबे करी थे।
1: हाँ।
0: और साथे साथ जो उन आवे वाला अपन समय है।
1: हाँ।
0: वह बारे में सोची थे और कुछ रुपया पैसा जोड़ के राखी थे।
1: बिल्कुल भैया, और रुपया पैसा जोड़ के रखे चाहे अपन बहुत सारे किसान पंच भाई जो है अपने बुढ़ापा तक का जब थोड़ा काम कम हो जाते हैं और रुपया काम तो उतने रहते हैं, तो वैसे समय में यहाँ कि कौने हिसाब से रुपया क्या बचत की जाए कि उस समय में यहाँ काम आवे।
0: बिल्कुल भैया, और यह बात जौन है आपन सरकारो सोचत है।
1: हाँ।
0: कि जौन हम पंच है हमार मान सम्मानो बना रहा और कौनो मेर का दिक्कत न हुए, यही वजह योजना चलाए रही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यही मा का है भैया।
1: हाँ।
0: कि जौन पंच है अपने अपने उम्र के हिसाब से आपन अंश जौन है वही का लगावत है और सरकारों पैसा लगावत है। और फिर भैया जब हम पंच 60 साल के हो जायत है तो फिर वो जैसे पेंशन होत है।
1: हाँ।
0: वही मेर हम पंचन का एक निर्धारित पैसा जौन है वो दियत है, जैसे हम पंच के जौन जिंदगी है वो आसान हो जात है।
1: बिल्कुल रामजीत भैया, ई योजना का लाभ जो है अपने हर किसान हर पंच बहन के यहाँ लेक चाहे।
0: हिमांशु भैया, जौन अपने आसपास बदलाव हो रहा है।
1: हाँ।
0: वही का हम पंच जानित है आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 160 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कृषि में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजना के अंतर्गत 10,59,82,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। वहीं किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, बीज भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीजों सहित विभिन्न बीज आधारित मदों पर खर्च की जाएगी। सरकार के इस वित्तीय प्रावधान से प्रदेश में उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने और कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: हिमांशु भैया।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती का काम काज तो करबे करी थे, साथ ही साथ हम पंच बागो बगीचा लगाई थे।
1: बिल्कुल।
0: और वही माँ कौनो मेर के अगर नुकसान हो जात है।
1: हाँ।
0: तो आपन जो कमाई है वो कम हो जात है। और कहूँ कीट पतंगा लाग गए तो कुछ कहन कनाई।
1: अरे भैया कुछ पूछबे ना करो, जो है कीट पतंगन में यहाँ तो इतना ज्यादा नुकसान हो जात है कि कहो बढ़िया हरे भरे बिरवा पूरी पूरी बाग सूख जाए। वही माँ तो इससे संबंधित आज केरी बात में यहाँ बहुत बढ़िया भेंट वार्ता लेकर आए हैं। आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन और एका बता रहे हैं डॉक्टर हरिशंकर सिंह भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आम की व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं वहां इस मौसम में हानिकारक कीटों के प्रबंधन के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें यानी IPM कैसे अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर HS सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय आम के जो फलदार वृक्ष हैं उनमें समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आम के फल की तोड़ाई के बाद में कीट प्रबंधन के हिसाब से बहुत खास समय है। समन्वित कीट प्रबंधन की शुरुआत इसी समय से की जा सकती है। इसमें 3-4 कार्य हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। पहला ये बगीचे की साफ सफाई और प्रूनिंग बहुत जरूरी है, जो कि पुरानी शाखाएं वगैरह हैं उसको काट करके निकाली जाए और पत्तियों को हटाया जाए। इसके अलावा खेत की जुताई की जाए जिससे कि जमीन में छुपे हुए कीड़े मकोड़े सब मर जाएं। इसके अतिरिक्त बायोपेस्टिसाइड्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।
3: यानी जैविक उपाय।
4: हाँ, जैविक उपाय जो है उनको भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे कि आम के पुराने पेड़ों के तने पर बहुत सारे हापर या फुदका बैठे हुए मिलेंगे, जो कि बारिश में उतर करके इस पर चले जाते हैं और पूरी ठंडी इसी पर बैठे रहते हैं। जैसे ठंडी खत्म होगी और नई पत्तियां निकलना शुरू होंगी या जो है नए फूल आना शुरू होंगे, तने से उठ करके और धीरे धीरे फूल पर पहुंचना शुरू करेंगे। अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में हम आम के तनों के ऊपर ही जहां छुप कर बैठे होते हैं वहीं पर अगर दवा डालकर इनको मार दें तो इनकी संख्या इस समय बहुत कम होती है, क्योंकि खाते पीते कुछ नहीं है, बड़ी सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, तो इनके ऊपर दवा पड़ते हैं इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है।
3: डॉक्टर साहब जो आप मैंगो लिफाफर की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन सितंबर का महीना चल रहा है अभी भी आम के फलदार वृक्षों पर जाला कीट की समस्या है।
4: जी जी जी, ये बहुत समय अनुकूल प्रश्न है आपका। जाला कीट हर वर्ष बहुत भयंकर रूप से आम के बगीचों में आता रहता है, और जो बगीचे बहुत ऊंचे हैं, पेड़ जहां पर बहुत ऊंचे हैं और छायादार हैं, वहां पर इस कीट का बहुत भयंकर प्रकोप होता है। परंतु पिछले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप कम इसलिए हुआ क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, और इस बार भी इसका प्रकोप कम देखा जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है। इन क्षेत्रों में इसका प्रकोप हो रहा है, वहां पर ऊपर की पत्तियों को जोड़ करके आपस में चाट करके खा जाता है,
3: जाला बना लेता है,
4: झोंपा बना लेता है, और एक एक झोंपे में आठ आठ दस दस कीड़े बैठे रहते हैं। इनके व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि अगर इनके झोंपे को या इनके झोंझ को आप छू लीजिए या किसी डंडे से खोद दीजिए तो ये तुरंत अपने झोंझ को छोड़ करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो अगर इनकी रोकथाम करना है, लंबी जो है लग्गी हो या डंडा हो जिसमें कोई चीज बांध करके अगर आप इसको जो है जरा झोंझ को इनको आप हिला दें,
3: तेज हंसिया,
4: हाँ हंसिया हो, उससे भी अगर किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब कर दे, छेड़छाड़ कर दे, तो ये सारे कीड़े जमीन पर नीचे गिर पड़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं।
3: और कोई सुरक्षित रसायन?
4: हाँ, और अगर जो है नहीं जो है किसान भाई इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ हैं, वहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, तो दवा डालना एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो ऐसे में बिवेरिया बैसियाना नाम की एक
3: जैविक
4: कीटनाशक, वो इस पर बहुत बढ़िया काम करती
3: है। जैविक कीटनाशक
4: है, जो कि चूंकि ये जो कीड़े रहते हैं झुंझ में रहते हैं, वहां नमी बहुत रहती है और नमी में ही बिवेरिया बैसियाना बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर इसका छिड़काव कर ले जाएं तो बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। अब मान लो ये नहीं मिल पा रही है तो दूसरा तरीका ये है कि लैम्ब्डा साई हेलोथ्रिन 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, अन्यथा बहुत पुराने जमाने से किसान भाई क्विनोफास जो 1.5 ml दवा जो है मिला करके छिड़काव करते आए हैं प्रति लीटर, और यह दवा समझिए कि जाला कीट के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है।
3: और जहां ब्यूबेरिया बैसियाना प्रयोग करना है तो माचिस की एक डिबिया 1 लीटर पानी के।
4: जी जी जी हाँ, माचिस के, हाँ ठीक कह रहे हैं
3: डॉक्टर साहब। तना बेधक कीट की भी समस्या, जो ट्रंक बोरर है उसकी भी समस्या आम के बागों में बहुत ज्यादा आती है।
4: जी जी, ये ट्रंक बोरर मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि और जितने भी कीड़े लगते हैं ये कीड़े आम को सीजन के हिसाब से नुकसान पहुंचा देते हैं। कोई फूल खा लेता है, कोई पत्ती खा लेता है, कोई फल को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन आम का पौधा बचा रहता है। ट्रंक बोरर एक ऐसा कीड़ा है जो आम के वृक्ष को ही खत्म कर देता है।
3: जी,
4: इसलिए इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ट्रंक बोरर बहुत खतरनाक कीड़ा, जिसको हम तना छेदक भी कहते हैं,
3: यानी तने में अगर लग गया तो पूरा पेड़ चाट,
4: हाँ पूरा पेड़ सूखने की संभावना हो जाती है। अच्छा, इसके साथ समस्या ये है कि ये अभी थोड़े दिन में इसकी अंडे देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी ये निकला है, इसका जो प्रौढ़ है अभी निकला है और ये अभी अंडा देना शुरू कर देगा। कीड़ा धीरे धीरे करके अंदर घुस जाएगा और अगले साल तक उसी के अंदर खाता रहेगा, बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा।
3: और बुरादा निकलता रहेगा?
4: बुरादा नहीं, बुरादा शुरू में नहीं निकलता है। जब ये आपका जुलाई अगस्त का महीना आएगा, जब ये कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है
3: जी,
4: तब ढेर सारा जो है पानी निकालता है, बुरादा निकालता है, तब इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
3: तो इसका समन्वित प्रबंधन हो कैसे?
4: हाँ, समन्वित प्रबंधन का तरीका यह है कि जैसे इस

0: में अंडा दे रहा है ये, तो आम के वृक्ष के तने के ऊपर अगर संभव हो सके तो क्लोरोपाइरीफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से 1.5 मीटर तक केवल छिड़काव कर दें,
1: यानी जमीन की सतह से
0: 1.5 मीटर ऊपर केवल तने के ऊपर उस पर छिड़काव कर दे, जितनी नई इल्लियां या अंडे निकले होंगे वो सब मर जाएंगे। तो एक तो तरीका यह है। दूसरा, अब अगले सीजन में पता आप लगा पाएंगे कि ये अंदर घुसा है कि नहीं, तो इसके लिए किसान भाइयों को सलाह मैं देता हूं कि आप जून जुलाई के आसपास अपने बगीचों का हर पेड़ का निरीक्षण निश्चित रूप से और नियमित रूप से करते रहें।
1: अगर पिछले साल घुसा है और इस समय बुरादा निकल रहा है तो?
0: हाँ, तो इस समय क्या कर सकते हैं, एक हंसिया ले लें, हंसिया से जो है जहां पर ये बुरादा निकल रहा है छाल उसके जो है हंसिया के नोक से छाल पर मारें तो छाल हट जाएगी क्योंकि ऊपर से एकदम कमजोर हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारा बुरादा भरा रहेगा, उसको साफ करके निकाल दें, उसमें देखेंगे तो एक छोटा सा छेद दिखाई पड़ता है, इसी छेद के अंदर एक घुसा रहता है
1: जी।
0: उसमें एक साइकिल की तीली या कोई चीज डाल करके अच्छी तरीके से उसको हिला दें, और इसके बाद में अगर कीड़ा मर जाए तो मर जाए, ये एक अवसर की बात है, अगर नहीं मरता है तो उसमें कोई भी कीटनाशी, ये जो इंजेक्शन होता है जो आदमियों को सुई लगाई जाती है
1: जी, जी।
0: उसी में जो है
1: सिरिंज
0: उसमें जो है
1: दवा
0: भर करके और उसी छेद में मुंह लगाकर खूब तेजी से पिचकारी की तरह मार दे, तो दवा अंदर तक घुस जाती है, उसके बाद वहीं बगल से गीली मिट्टी लेकर के उस छेद को अच्छी तरीके से बंद कर दें। इसके बाद में क्या करना होगा कि चूंकि आम के सतह के ऊपर से छाल हट जाती है तो बीमारियों को लगने की संभावना रहती है, तो अपनी जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है ये 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके उस पर छिड़काव कर दें, तो जिससे कि बीमारी
1: या गाढ़ा लेप लगा,
0: हाँ गाढ़ा लेप भी लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं सूट गाल सिला की भी समस्या आती है?
0: जी जी, ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, केवल जब फूल आने का समय होता है या फूल आने के थोड़ा दिन पहले फूल की जगह पर छोटी छोटी गांठें आम की टहनियों में बन जाती हैं और किसान भाई जान ही नहीं पाते कि हो क्या गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो अंडा देना का काम होता है ये जो है अगस्त और सितंबर में ही होता है,
1: अभी से
0: तो अगर इस कीड़े को रोकथाम करना है तो दवा डालने का समय केवल अगस्त और सितंबर ही है, अगर इस 2 महीने में चुक गए तो इस कीड़े को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर लगातार 2-3 साल तक किसी बगीचे में आप जो है 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में या 30 अगस्त के बीच में 2 बार स्प्रे आप कर चुके हैं तो 2-3 साल में वो खत्म हो जाता है, कीड़ा फिर नहीं आता है।
1: कौन सा सुरक्षित रसायन
0: सबसे बढ़िया दवा, चूंकि ये कीड़ा बहुत कोमल होता है और पत्ती के अंदर बैठा रहता है तो इसमें जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है जैसे इमिडाक्लोपिड, ये 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से डालते हैं,
1: यानी 1 ml दवा 3 लीटर पानी के
0: जी जी जी, और इसी तरीके से एक थायमेथक सांप दवाती है उसको भी जो है इसी दर से इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: यानी 1 ग्राम 3 लीटर पानी।
0: जी हाँ जी हाँ, इसका छिड़काव करें और 2 छिड़काव कर दें तो सूटगाल सिल्ला का नियंत्रण आराम से हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर किसान भाई नोट कर सकते हैं, 94-37-63-57-36 94-37-63-57-36 9437635736।
1: डॉक्टर हरिशंकर सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमांशु भैया।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो हम पंचन के बातचीत तो भैया चला करी मूल तनी कुछ गीत गवनाई हो जाए।
4: बिल्कुल भैया, अब सुना जाए बहुत बढ़िया लोकगीत खेमटा।

0: रामजीत भैया।
1: हाँ हिमांशु भैया।
0: देखो अपन किसान भाई तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो उन तनुक अलग तरीके से ने जो है किसानी कहके बढ़िया मेहनत कहके जो है बहुत बढ़िया मुनाफा कमाते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो वह मैं यहाँ आज के किसान है इंद्र प्रकाश सिंह भैया, और ये बता रहे हैं धान उत्पादन के बारे में। यहाँ
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम ब्लॉक के जानीपुर गांव, जहां के नौन्मेषी किसान इंद्र प्रकाश सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। इंद्र प्रकाश भैया नमस्कार।
3: जी प्रणाम।
2: इंद्र प्रकाश भैया, आप नौन्मेषी खेती के लिए जाने जाते हैं, नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: मैं यूपी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, मैं सीएजी हॉर्टिकल्चर से हूँ, खेती 9 का पास आउट हूँ।
2: यानी लगभग 37 साल हो गया। तो खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: 2002 के बाद।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: मेरे पास करीब 9 एकड़ है।
2: तो 9 एकड़ में कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: वर्तमान समय में तो धान है 6 एकड़ पे।
2: तो कौन कौन सी वैरायटी आपके खेत में है इस समय?
3: यमुना गोल्ड है 5 एकड़, और 1 एकड़ जो है ये राजभोग है।
2: क्या खासियत महसूस कर रहे हैं दोनों वैरायटी जो आपके खेत में है इस समय?
3: जैसे यमुना गोल्ड जो है ये मोटा धान है और ये वेट ज्यादा पकड़ता है।
2: अच्छा, वजन?
3: वजन। और राजभोग जैसे सुगंधित है और वो खाने के लिए है।
2: तो धान की रोपाई और उसके पहले नर्सरी से लेकर के धान की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम आप धान में कर रहे हैं?
3: देखिए, मैं जब धान लगाता हूँ तो निश्चित रूप से ये करता हूँ कि गेहूं की कटाई के बाद ढैंचे को लगाता हूँ, और ढैंचा इस तरीके से मैं करता हूँ कि 50 दिन का ढैंचा हो जाए तो 20 से 22 दिन का मेरी नर्सरी हो जाए।
2: अच्छा, तो उसके बाद पलटाई करते होंगे हरी खाद की?
3: उसको पलटने के बाद जो है तुरंत रुपाई कर देते हैं।
2: पूरा 6 एकड़ में?
3: 6 एकड़ में।
2: तो आपने इस साल नर्सरी कब डाली और रुपाई कब की?
3: जैसे आमतौर पे हमारे क्षेत्र में जो है मध्य अप्रैल के बाद गेहूं कट जाता है
2: ये,
3: और अप्रैल लास्ट में जो है ये पानी चला करके ढैंचे की बुआई हो जाती है। जब ढैंचा मेरा औसतन 15 से 20 दिन का हो जाता है उस बार नर्सरी पड़ जाती है, क्योंकि जो इसके नोड्यूल्स हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उसमें पलटने के बाद जो है जहां तक मेरा अनुभव है कि अगर ढैंचे के खेत में जब धान की रुपाई हम करते हैं
2: जी।

0: तो दो तीन चीजें अपने आप हो जाती हैं। पहला कि खरपतवार का नियंत्रण अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं एक लेयर बना लेती हैं, खरपतवार उगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या यूं कहें कि नगण्य हो जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमोसफियर से किया रहता है वो मेरा धान जो है वो पा लेता है,
1: यानी खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है।
0: हाँ, और ये जल धारण क्षमता
1: बढ़ जाती है। फिर रोपाई कब करते हैं आप?
0: सपोज करिए कि अगर हम अप्रैल को हम डाले हैं ढेंचे को, तो नर्सरी मेरी पड़ेगी 20 मई को।
1: हाँ,
0: यही रेशियो रहता है।
1: तो इस समय आपकी फसल कैसी चल रही है?
0: अच्छी है।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा आप देते हैं, रासायनिक खाद या जीवाणु खाद?
0: जैसे हम नाइट्रोजन जो है करीब 100 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 80, और पोटास जो है 70 से 75
1: केजी, यानी 2.5 एकड़ की मात्रा आप बता रहे हैं।
0: जी,
1: तो ये जो भी रासायनिक खाद की मात्रा है किस्तों में देते होंगे?
0: नहीं, जैसे फास्फोरस और पोटास तो सॉइल एप्लीकेशन में पड़ जाती है,
1: यानी रोपाई के पहले।
0: रुपाई के पहले, लेकिन नाइट्रोजन को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं 3 दफा।
1: जी,
0: जैसे खरपतवार अगर आ गया मेरा 30 दिन बाद, खरपतवार का नियंत्रण करने के बाद जो भी 100 केजी नाइट्रोजन है मेरा, उसका 1/3 एक टॉप डेसिंग।
1: जी,
0: फिर जो है 50 दिन पे एक टॉप डेसिंग, और 60 दिन के बाद एक टॉप डेसिंग,
1: यानी 3 किस्तों में नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं।
0: जी जी,
1: इस समय कोई हानिकारक कीट या बीमारी के लक्षण तो नहीं है? अगर है तो उनका प्रबंधन कैसे आप कर रहे हैं अपने खेत पर?
0: जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे जो है ये हरदा रोग लगता है।
1: जी,
0: लेकिन ये जो हरदा रोग है मेरा, उसका सॉइल ट्रीटमेंट पहले ही कर लिया जाता है।
1: क्या उपाय करते हैं?
0: जैसे हेक्साकोनाजोल का जो है
1: जी
0: लिक्विड उसमें सीड में ये कर लेते हैं
1: हम, यानी बीज शोधन कर लेते हैं।
0: जी जी,
1: क्या खड़ी फसल में सुरक्षात्मक छिड़काव भी करते हैं?
0: सर, सबसे ये है कि अगर हरदा रोग लग गया आपका
1: जी
0: खेत में, तो वो जहां तक मेरा अनुभव है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको।
1: लेकिन सुरक्षात्मक अगर पहले ही छिड़काव कर दें तो
0: सीड ट्रीटमेंट ही उसका बेस्ट ये है।
1: क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार आप धान उत्पादन से जुड़े हैं, तो एकड़ पीछे कितना लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं, और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: एक एकड़ में औसतन जो है आपका 25 क्विंटल हो जाएगा
1: पैदावार
0: हो जाएगा जमुना गोल्ड का।
1: और राजभोग का
0: वो कम होता है
1: लगभग,
0: अब उसको मान के चलिए कि एकड़ में वो 15 के ऊपर नहीं जाएगा,
1: लेकिन उसकी कीमत अधिक मिलेगी आपको।
0: हाँ, कीमत अच्छी मिल जाती है।
1: और लागत में भी अंतर होगा?
0: नहीं, लागत तो लगभग दोनों की बराबर ही आती है।
1: तो क्या आंकड़ा है आपका आय व्यय?
0: जैसे अगर उसको हम कैलकुलेट करें, 10 से 12 पड़ेगा एकड़ में।
1: 10 से 12 हजार?
0: हजार।
1: और अगर आप 25 क्विंटल धान बेचते हैं
0: तो जैसे ये समर्थन मूल्य के हिसाब से दें तो 24 को वो मल्टीप्लाई कर दें 25 में,
1: यानी लगभग 60 हजार।
0: जी,
1: तो लगभग 40,000-50,000 की बचत हुई आपकी?
0: ना, बचत हो जाएगी।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 97-93-67-67-71 97-93-67-67-71 97-93-67-67-71
1: इंद्र प्रकाश सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप एमएससी कृषि की पढ़ाई करने के बाद लगभग 25 सालों से आप खेती से जुड़े

और इस समय आपके खेत में 6 एकड़ धान की फसल अच्छी लहलहा रही है, आप खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: देखो, अपने खेती पाती में मौसम के जानकारी हो बहुत जरूरी रहा भैया।
8: बिल्कुल भैया,
7: तो अपने पंच भाई का मौसम के जानकारी बता दीन जाए।
8: जो मौसम है वो है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त हुआ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 24, 25, 26 यानी अगले 7 दिन के वर्षा पूर्वानुमान इस प्रकार है। कहीं कहीं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े संभावना है। और अगले 7 दिनों में यहाँ मौसम संबंधी जो चेतावनी है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तो भैया, ऐसे समय में यहाँ खुद का, अपने घर परिवार के यहाँ, साथ में यहाँ अपने हरहा गोरुन के यहाँ सुरक्षित स्थान पर बांधे और उनका ध्यान रखें।
7: बिल्कुल भैया, यही के साथ है, अगर कोनो बात हम पंचन से कहे चाहें तो वकरी तय कागज कलम उठाए लिए और लिखें हमार पता, कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन नंबर 226001। जे पंच मेल भेजे चाहें वह मेल लिखें
8: फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। तो भैया, घड़ी इशारा कह रही है समय हो चुका है, तब तक के लिए ले लीजिए पंचन से ने आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख। मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी। रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का भूमि पूजन किया और भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। ये परियोजना आगरा एक्सप्रेसवे के समीप 12,000 करोड़ रुपए से 10,680 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2,166 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 5 बहुमंजिला अपार्टमेंट का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वरुण विहार 6,500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित होगा, जहां 6 लाख से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। नैमिष नगर 4,100 एकड़ में विकसित होगा और 4 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ को केवल महानगर और जनपद तक सीमित न रखकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में व्यवस्थित विकास किया जा रहा है। लखनऊ आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है।
1: ये आज की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को प्लांड वे में अर्बन डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्लान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक था। एक जगह पर सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। आज के समय में जब एजुकेशन के हब के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है, हेल्थ केयर के नए हब के रूप में लखनऊ को नई पहचान मिली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नए केंद्र के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। स्ट्रीट शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2 लाख से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
4: पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
3: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।
5: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत काफी सारा सपोर्ट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कराया है, वो स्टार्टअप का एक बोन है जो कि उसको आने वाले टाइम में काफी स्ट्रोंगर करेगा।
3: सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न 6 वर्षीय पाठ्यक्रमों और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार में पंजीकृत स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी और उसमें करीब 35 यात्री सवार थे। ग्रेटर नोएडा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आग बस के इंजन से शुरू हुई और तेजी से बस के अन्य हिस्सों में फैल गई। बस के चालक और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। जेवर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
6: प्रारंभिक जांच में वो बस महोबा जा रही थी दिल्ली से और नेशनल परमिट की बस थी, बिहार में रजिस्टर्ड है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, इमरजेंसी गेट नहीं खुला जिसके कारण सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका। इसकी जांच कराई जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। एशियाई खेल 2026 में अमेठी के सलमान खान ने रोइंग की पुरुष डबल्स स्कल्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेता चीन से 3.48 सेकंड और रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान से 2.76 सेकंड पीछे रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ प्रयास ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक सुयोग्य स्थान दिलाया है। पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जनपदों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख। मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी। रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 और 20 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बंदिश से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ललकार। इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हम से मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी को। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: यानी कि आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है?
1: प्यार के खिलाफ कौन हो सकता है?
2: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
6: बस
5: समझ गया।
6: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा केंद्र से मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म लावारिस से किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अनजान का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
10: वो खुदा ही जाने अब होगा

एक दूसरे के लिए। इस फिल्म से अभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम को और अनुराधा पौडवाल को। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं खून भरी मांग फिल्म से साधना सरगम और नितिन मुकेश को। इंदिवर के बोल है और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

रात्रि के 8 बज चुके हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं समीर के लिखे गीत को अदनान सामी की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नुसरत बद्र के लिखे गीत को सोनू निगम की आवाज़ में। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक को।

इसी आखिरी गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 और 18 सेकंड हुए हैं। अब आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सुना फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के से मनोहर शेट्टी, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति को। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था दर्शन राठौर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मन से उदित नारायण और अलका याग्निक को। बोल समीर के हैं और संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना उदित नारायण को फिल्म ये दिल आशिकाना से। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आबिदा परवीन को।

इसी के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:44 और 42 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 8:45 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके बाद रात 9 बजे अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Vishal Sharma.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे, हमारे आचरण से लोगों को पता

0: पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
6: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
1: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
7: The character of war,
8: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
6: With the changing character of war.
1: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
9: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
10: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
11: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
12: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
13: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
12: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
15: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
14: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
15: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है
0: और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
14: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
14: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
2: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म नया दौर का ये गीत। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत था और संगीत दिया था ओपी नैयर ने।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों

0: के हित में जारी।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो से लता मंगेशकर को। हसरत जयपुरी का लिखा है ये गीत है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले को। गीत शैलेंद्र के थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। अब आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का आवाज करते हैं फिल्म दयावान से पंकज उधास और अनुराधा पोडवाल की आवाजों से। गीत को लिखा है अजीज कैसी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोला और शबनम इस फिल्म से अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार को। बोल अनजान के थे और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। इसी आखिरी गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 9:45 और 13 सेकंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं शहजाद अहमद के लिखे कलाम को गुलाम अली साहब की आवाज से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना यास्मीन जयपुरी के लिखे कलाम को मिताली सिंह की आवाज में। इसी के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बाजीगर से विनोद राठौर की आवाज में। गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

परदेस। इस फिल्म से अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म वीर जारा से लता मंगेशकर और सोनू निगम को। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

कविता कृष्णमूर्ति और ए हरिहरन की आवाजों में अभी आपने सुना हम दिल दे चुके सनम का ये प्यारा सा गीत। गीत को लिखा था महबूब ने और संगीत दिया था इस्माइल दरबार ने। श्रोताओं कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म ताल से ए हरिहरन और सुखविंदर को। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

इसी आखिरी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा अब यहीं समाप्त होता है। ...102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 और 5 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं विदुषी गिरजा देवी जी का ठुमरी गायन।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना उस्ताद राशिद खान का तराना गायन, राग था झिंझोटी। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:59 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Zubair. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत

0: एकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एमडीआर का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरूका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ...102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।